0: श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
1: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
2: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
1: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
3: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
0: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
4: सब कुछ साफ रख सकते हो,
5: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
6: क्योंकि ये कौन बोला?
5: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
3: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
7: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
8: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
7: K2 ड्राइव मतलब?
8: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
7: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
8: 100%
9: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
10: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682-346-4611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी.
12: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
13: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
12: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
13: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
0: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
14: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

To continue what I said right before the short commercial break something like hold on to positive things that elevate your spirit and be with the positive people. You all positive people, this is Paro, the positive RJ, speaking to you from the very positive स्टूडियो ऑफ फनीशा रेडियो. और अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं 9 बजे तक हूँ आप लोगों के साथ, करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बात. आज का दिन पॉजिटिव हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं लेकिन उसके साथ कुछ एक इंटरेस्टिंग सा दिन है. वैसे तो बहुत और बहुत सारी चीजें आज के दिन में, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू शेयर विद यू विच आई वी विल बी डूइंग इन अ लिटल बिट. लेकिन लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग एंड आई होप यू आर इंजॉइंग वेयर एवर यू आर दिस ब्यूटिफुल रेनी वेदर. अगर कहीं ट्रैफिक में फंसे नहीं है और घर लौटने वाले, so I hope this song brings a very positive smile on your face.

ये तो मैं भी कहती हूँ, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, मतलब टेंशन किस बात का है पारो मतलब पारो, ये पारो को खुद कहती है कि टेंशन किस बात का है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिल, हमारी जिंदगी हमसे जुड़ा हुआ है लेकिन हमसे अलग भी है. सो इट्स अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन दैट समटाइम्स हैव आई हैव विद माई सेल्फ. और मुझे बहुत अच्छी अच्छी प्यारे प्यारे गानों की रिक्वेस्ट आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और अगली जो गाने की रिक्वेस्ट आई है, आई वॉन्ट मैंशन दस, थोड़े टाइम पहले, आई थिंक कुछ हफ्ते पहले, दो तीन हफ्ते पहले मैंने इन जनाब का नाम लिया था, लेकिन मौका मिलता है मैं फिर से ले लेती हूँ. बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट देर आर लॉट ऑफ एक्टर्स, लॉट ऑफ सिंगर्स, लॉट ऑफ आर्टिस्ट हु डोंट रीच द बिग पेडेस्टल ऑफ लाइक सुपरस्टार, बट दैट डजंट मीन दैट दे हैव एनी लेस कॉन्ट्रीब्यूशन या उनका काम कम अच्छा है. बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो अगले जिस गाने की रिक्वेस्ट आई, 1991 की फिल्म है यारा दिलदारा एंड अदिति ने करी है उसकी रिक्वेस्ट उस गाने की. लेकिन जैसी उस गाने की रिक्वेस्ट करी और वो फिल्म के बारे में मैंने सोचा, मेरे सामने आया नाम आसिफ शेख. आसिफ शेख साहब इस फिल्म में हीरो थे और वो एक्चुअली, और हम लोग एक बहुत पहले एक सीरियल आया करता था उसमें भी उन्होंने काम किया. एंड ही हैज डन अ लॉट ऑफ टीवी सीरीज एंड ही इज वेरी वेल नोन फॉर टीवी सीरीज. और यस बॉस मुझे उनका बहुत अच्छा लगता था. और वो यस बॉस जो है ही, देयर सम लाइक रियली रिमार्केबल कैरेक्टर्स इन दैट एंड वो इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज. एक तो यस बॉस है और उसी के साथ एक और सिटकॉम है बाबा जी घर पर हैं. दीज बोथ वर लाइक वेरी वेरी पॉपुलर एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन कॉमेडी सिटकॉम्स. और इसमें आसिफ शेख साहब काम करते थे. और एक और चीज बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है हीरो बन के किसी को इम्प्रेस करना, शायद उतना मुश्किल नहीं होता जितना लोगों को हंसाना. सो आई ऑलवेज फील वेन पीपल हु डू कैरेक्टर एक्टिंग एंड दे मेक यू लैफ फॉर ईयर्स, जैसे इन शोज की बात कर रहे हैं तो 10-1 साल तक चले हैं, तो 10-1 साल तक हंसाना, मतलब इतना लंबा हंसाना. अदिति साहब, अदिति जी, आपके लिए आशिक से आसिफ शेख साहब का ये गाना.

सबकी मंजिल एक ना एक मंजिल, बहुत सारी मंजिलें होती हैं, हमारी सारी ख्वाहिशें होती हैं हमारी, लेकिन एक मंजिल मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की होती है कि अपनी पसंद का घर हो, हमारा ड्रीम होम हो, लेकिन कई बार बजट और मॉर्गेज हमें ले डूबता है, लेकिन उसके लिए भी इलाज है हमारे पास. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट ड्रीम होम मॉर्गेज. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज. योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज. 1998 से ये आपके पास है. सिंस 1998 Dream Home Mortgage has helped you and other families across the country turn home ownership into reality with personalized mortgage solutions and a smooth, stress-free process. They are licensed in all 50 states, so bilkul Texas ke bahar bhi they will work with you. Their experienced team is committed to finding the right loan options tailored to your needs. Whether you are buying your first home, upgrading or refinancing, start your home ownership journey with confidence today with Dream Home Mortgage. Number aapko main bata देती हूं, उनका फोन नंबर है 972-245-5626 और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स. एंड ड्रीम होम मॉर्गेज इज वेयर मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. दोस्तों यारो, मैं हूं पारो. थोड़ी देर पहले जैसे मैं बता रही थी, चल रही है ये हमारी गाड़ी, ये जर्नी वाली गाड़ी हमारी. और अगला गाना भी कुछ ऐसे ही मैं चला रही हूँ जिसमें एक जर्नी वाली बात है. तो क्योंकि फनी शो पे मैं आपसे कल भी ये बात मैंने कही थी, बिकॉज आई ट्रूली फील दैट आई एम एक्चुअली हैविंग दिस जर्नी विद यू ऑल, दिस जर्नी ऑफ टाइम, दिस जर्नी ऑफ नॉस्टैल्जिया, दिस जर्नी ऑफ सम इमोशनल सॉन्ग्स एंड मेमोरीज एंड लॉट ऑफ ब्यूटिफुल स्टोरीज. ये जो जर्नी है, ये जो म्यूजिकल जर्नी है, ये हम साथ पूरी करते हैं ये शाम के वक्त. तो अगर आपकी जर्नी अच्छी है तो आप सच मानिए मेरी जर्नी भी बहुत अच्छी है.

वैसे कुछ चीज़ें जो खराब होती हैं, दिखती हैं, मीनिंग उनका ऊपर ऊपर से वो होता है, ज़रूरी नहीं वो खराब हो, कई बार वो बहुत मीठी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि डेविल्स फूड केक, रिच डार्क चॉकलेट केक, आई एब्सोल्युटली लव इट। लेकिन जब मैंने इसका नाम सुना था पहली बार, तो मैंने सोचा था यार ऐसा नाम क्यों रखा, मतलब इसको डेविल बना दिया और इससे तो लोग दूर नहीं भागेंगे, इसको तो लोग पसंद करेंगे, वो अलग बात है शायद। दैट इज़ वाई दे पुट दैट द टेम्पटेशन ऑफ डेविल, एंड मे बी देर इज समथिंग टू दैट, राइट? बट इट इज सो गुड। क्यों बोल रही हूं मैं, ऑब्वियसली मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, आई एम अ बिग बिग चॉकलेट फूडी, आई लव चॉकलेट। मैं चॉकलेट ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब में खा सकती हूँ, चाय कॉफी चॉकलेट ये तीन चीजें हो तो मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन, बट टुडे इज द डे व्हेन दिस इज सेलिब्रेटेड। और अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं खाया इसको अभी तक, मुझे जल्दी से जाके व्हेन आई एम डन विद माई शो आई हैव टू फाइंड अ प्लेस वेर आई कैन फाइंड अ डेविल्स फूड केक, क्योंकि आज खाना पड़ेगा बिकॉज टुडे इज नेशनल डेविल्स फूड केक। जी हाँ, डे आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब आज के दिन इनका दिन है, आज का दिन इनको इनको सेलिब्रेट किया जाता है। जो पर्टिकुलर डेविल्स फूड केक है विच इज द रिच डार्क चॉकलेट केक, दैट इज सेलिब्रेटेड टुडे विच इज ऑन May 19th। और इससे मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बात भी सोची, दैट हाउ मेनी थिंग्स हैव डेविल इन इट्स नेम दैट वी एब्सोल्युटली सम ऑफ अस, मे बी नॉट एवरीबडी बट सम ऑफ अस लव। फॉर एग्जाम्पल डेविल्ड एग्स, आई रियली लाइक दैम। डेविल्ड हैम नॉट सो मच, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं हैम नहीं खाती, बट आई एम श्योर देर आर सम पीपल इन the listeners who love that devil sauce, spicy sauce बहुत लोगों को पसंद है, devilishly hot, हम spicy, very spicy food के लिए बोलते हैं। और इतने सारे हमारे expressions में devil साहब, I mean devil घुस जाता है, जैसे कि speak of the devil is in the details, between the devil and the deep blue sea, give the devil his due, play devil's advocate, बहुत सारे हम लोग करते हैं, right? We play devil's advocate, like the devil, what the devil to play?

0: सूरज पानी में गिर के बुझेगा या नहीं वैसे, लेकिन जल्दी बुझने वाला है. आई मीन मुझे लगता है शायद हो सकता है बुझ भी गया, अंधेरा हो गया. और क्योंकि मैं स्टूडियो में हूँ आप लोगों के साथ 6 बजे से, तो जब मैं आ रही थी तब थोड़ी रोशनी थी, मुझे लगता है अभी भी रोशनी होगी. थोड़ा सा डेज आर मच लॉन्गर. बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय AG फिनटेक्स. एंड AG फिनटेक्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट, and they get you ready for the future. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com. Jin logo ka meri tarah bada mitha mitha khane ka man kar raha hai na, wo kha sakte hain Devil's Food Cake, because today is National Devil's Food Cake. Thodi si der mein lautenge right here, right here.
1: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? उमर ख्वाजा.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: I'll get married, so Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो.
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
7: वेट, इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं ही तो.
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट

0: के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन। आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
3: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल।
2: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
3: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
2: And what's so special at Neon Cactus?
3: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
2: Not bad.
3: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
2: Okay, this I didn't expect from you.
3: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
4: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
5: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
6: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

आज है May 19th एंड जैसे थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी बिफोर वी मूव टू अनदर थीम आई वांट टू एंड दिस ब्यूटीफुल डेविल थीम व्हिच इज डेविल्स फुट केक थीम नेशनल डेविल्स फुट केक डे है एंड देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग बहुत सारी जगहों पर हम डेविल वर्ड यूज करते हैं जैसे कि नेचर में या नेचुरल बहुत सारी प्लेसेस फॉर इंस्टेंस डेविल्स टावर डेविल्स ब्रिज डेविल्स पीक डेविल्स कैनियन बहुत सारे एनिमल्स के लिए यूज करते हैं एंटरटेनमेंट पॉप कल्चर में यूज करते हैं डेयर डेविल The Devil Wears Prada, of course. Sympathy for the Devil. बहुत सारी चीजें descriptions में use किया जाता है. Devil like, devil inspired, devilishly clever, devilish. But so many ways it is used, and it's not always negative. A lot of times it's positive. A lot of times it's just a part of our culture. तो ये एक interesting चीज है that इसलिए मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ जब when I think about such words that by themselves they are considered negative. लेकिन जब को मिला दिया जाता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री में नॉस्टैल्जिया में और खाने के साथ स्पेशली बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक के साथ तो उसका मीनिंग बदल जाता है और मुझे लगता है कुछ हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है अलग से देखें तो कोई एक चीज हो सकता है कोई एक चीज हो सकती है कोई एक इंसान हो सकता है शायद हमें गलत लगे बट व्हेन यू पुट इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीथिंग कई बार बहुत सही लगता है.

What a fun. This is actually bad news. देखिए अभी हम बात कर रहे थे the words that can mean bad by themselves. और interesting बात ये तो पूरी की पूरी फिल्म का ही नाम गलत है, गड़बड़ है, bad news. But it was a very popular film obviously. And request मेरे पास आने लगी हैं. अगर आप किसी गाने के request करना चाहते हैं, again want to say especially जिन लोगों ने अभी join किया है, उन्हें बोलना चाहती हूँ a very very happy Tuesday evening. And राहुल साहब, मैं आपका गाना ढूंढ रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुश्किल है. आपने बड़े अच्छे गाने की रिक्वेस्ट करी है और फिल्म भी बहुत ज़्यादा अच्छी, और जैसे मैंने कहा मेरे बड़े अजीज है. एंड द रीज़न फॉर दैट इज दैट हमारे राहुल साहब ने गाने की रिक्वेस्ट करी कि जो देव डी फिल्म का है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. इट्स अ मॉडर्न ट्विस्ट ऑन दी क्लासिक नॉवल ऑफ देवदास. जो देवदास का क्लासिक नॉवल है और जो उसके क्लासिक कैरेक्टर है देवदास, उसके ऊपर देव डी बनाई है. सो उसका एक मॉडर्न टेक किया है. स्टोरी वही है लेकिन उसको थोड़ा सा कंटेम्प्रनाइज कर दिया है या मॉडर्न कर दिया है. एंड और अगर देवदास की बात होती है, जब भी देवदास की बात होती है तो पारो की बात होती है, यानी कि मेरी बात होती है. सो इसलिए मुझे देवदी फिल्म, वैसे ही मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है और देवदी भी बहुत अच्छी फिल्म है. थोड़ी सी गड़बड़ ये है दैट इस गाने में बड़े लिरिक्स हैं, लिरिक्स में डायलॉग्स हैं. आई मीन सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड समथिंग दैट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ डायलॉग्स. नहीं, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि आई थिंक ये गाने थोड़ा सा आपको डायलॉग्स के साथ ही सुनना पड़ेगा. सो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड दैट डज नॉट हैव यस लिरिक्स फॉर श्योर but does not have a lot of dialogues. But thode se dialogues aayenge isme. Bahut achi acting hai Abhay Deol sahab ki. So here you go, Rahul sahab.

यार तू सारे पैसे रख ले,

0: दिल्ली वापस छोड़ोगे ना?
1: गाना बहुत अच्छा है, बड़े सारे मजेदार डायलॉग है, अच्छी सी जर्नी चल रही है, पूरी कहानी चल रही है इसमें. और कहानी अगर बात करें तो डेव दी एक्चुअली इज डायरेक्ट वाज डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप. अनुराग कश्यप साहब इज नोन फॉर सम ग्रिटी मूवीज एज यू नो, और ये भी कुछ इसी तरह की है, ग्रिटी मॉडर्न, काफी उनकी मॉडर्न मॉडर्नाइज कर देते हैं, कंटेम्प्रनाइज कर देते हैं. तो उन्होंने जो बंगाली क्लासिक देवदास है, 1917 का है, 100 साल से पुराना नॉवल है देवदास, उसको ये कह सकते हैं आप मॉडर्नाइज कर दिया या कंटेम्प्रनाइज कर दिया. लेकिन स्टोरी कुछ इसी तरह की है, जो इसमें देवदास देव बन गया, जो इसमें अभय डियोल, वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छी काम करते हैं, उन्होंने इसमें रोल किया है जो देव का रोल है, देव डी. एंड वेल दी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, ऑलमोस्ट लाइक मैन चाइल्ड, क्योंकि वही देवदास का कैरेक्टर है, रोता वोता रहता है, पीता रहता है, रोता रहता है. इस तरह का कैरेक्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, 100 साल से लंबा है, चला जा रहा है. अभी भी लोग, अभी भी उसके जब डिफरेंट वर्जन आते हैं तो लोगों को मजा आता है, पसंद करते हैं. पारो का कैरेक्टर ऑन दी अदर हैंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, जस्ट द ऑपोजिट, शी इज एक्चुअली द मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अ स्ट्रांग वुमेन. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो देवदास की कहानी है वो इसीलिए इतनी फेमस है क्योंकि उसने रोल रिवर्स कर दिया, उसने उसमें जो वुमेन को है वो इतना स्ट्रांग दिखाया, वो भी आज की बात नहीं है, इतने जमाने पहले 1917 के टाइम पे. एंड दैट रियली अपील टू पीपल, लोगों को बहुत अच्छा लगा पारो का कैरेक्टर, मुझे बड़ा पसंद आता है. मेरा नाम भी है, अच्छा हुआ मेरा नाम देवदास नहीं है. सो विद दैट आई वांट टू से, आई मीन देवदास का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, नथिंग अगेंस्ट दैट, क्योंकि अ लॉट ऑफ फेमस एक्टर्स हैव प्लेड इट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक रियली अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, पारो की पर्सनालिटी स्ट्रांग है और देवदास की थोड़ी सी हिली हुई सी है. एंड दैट इज सच अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. एंड थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अबाउट दिस फिल्म, राहुल साहब, देव डी. एंड विद दैट आई डू वांट टू से, इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड यू कैन कॉल इन 972-355-5555. 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ. और अगर अभी भी बाहर बारिश हो रही है, क्योंकि मैं स्टूडियो में हूं 6 बजे से, तो मुझे नहीं पता इस समय क्या आप लोग फील कर रहे हैं, ट्रैफिक एंड ऑल दैट. यस, आई कैन लुक अप ऑनलाइन इंटरनेट पर, बट इट इज अ डिफरेंट थिंग व्हेन माय लिसनर्स टेल कि अभी इस वक्त ऐसा है, बड़ी अच्छी अच्छी हवा है, हम खिड़की खोल के ड्राइव कर रहे हैं. नहीं नहीं पारो, हम तो फंसे पड़े हैं ट्रैफिक में, यू नो व्हाट एवर यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग. क्योंकि आज के जमाने में ये जो डिजिटलाइज जमाना है, जो AI वाला आर्टिफिशियल जमाना है, इसमें जो लिव्ड एक्सपीरियंस है ना, उसकी बात ही अलग है. तो कॉल करके बताइए क्या कर रहे हैं इस वक्त आप.

यही एटीट्यूड होना चाहिए. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उलझा हुआ मांझा जो है वो सुलझा लेंगे. वैसे मांझा अगर उलझ जाता है तो असल में बड़ा मुश्किल है. मतलब मैं रियलिटी, रियल वाले लिटरल मांझे की बात कर रही हूँ. अगर आपने काइट्स उड़ाई हैं और पतंग उड़ाई है तो हम तो खैर मांझा ही पकड़ने का काम करते थे, हम मतलब मेरे जैसे बच्चे. क्योंकि हमें जो एलीट ग्रुप होता था हमारा दिल्ली में, उन लोगों को तो पतंग उड़ाने का मौका दिया जाता था क्योंकि वो अच्छी उड़ाते थे. और स्पेशली जो बड़े बुली वाले बंदे होते थे, हमारे बड़े थे पश्चिम बिहार में दिल्ली में, सो वो तो उड़ाने का काम करते थे, हम मांझा पकड़ने का काम करते थे. तो मैंने मांझा का बड़ा एक्सपीरियंस है मुझे. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी बिहाइंड इट एज वेल. देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलैश क्योंकि बहुत शार्प होता है और उससे बहुत सारी इंजरीज भी हो जाती है मांझे से. तो यस, हमने बड़ी सारी हमारी इंजरीज भी हो रखी है, मतलब कि मांझा पकड़ते हैं और अगर वो उलझ जाता है तो उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है. बट आई रियली लाइक दिस मेटाफोर कि कई बार रिश्तों को उलझे हुए रिश्तों को मांझे की तरह ही होता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है उनको सीधा करना, उनको करेक्ट करना या उनको फिक्स करना. मैं कहती हूँ अगर फिक्स नहीं कर सकते तो कम से कम समझ ही लीजिए कि थोड़ा सा उलझ गए हैं. आई थिंक दैट बाय इटसेल्फ थोड़ा तो उसी में क्लैरिटी हो जाती है. और क्लैरिटी की अगर बात करें तो आपको एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ, एंड विच इज ऑल्सो दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस. यस डैलस, लिसन अप. स्टोर ओनर्स के लिए तो बिल्कुल ही ये बात है, दिस डेफिनेटली इज फॉर यू. रवीज समर किक ऑफ इज बैक. मार्क योर कैलेंडर्स. डेट्स बता देती हूँ आपको, June 3rd and June 4th, 9 AM to 5 PM. एंड दिस ईयर इट्स गोना बी बिगर. द एंटायर वेयर हाउस टर्न्स इनटू अ ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस. एक्सपेक्ट क्रेजी डील्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड फ्री गिफ्ट्स ऑल डे लॉन्ग. आप वेंडर्स से मिल सकते हैं, यू कैन मीट वेंडर्स, डिस्कवर बेस्ट सेलर्स एंड स्टॉक अप लाइक नेवर बिफोर. रवीज इम्पोर्ट वेयर हाउस, इनका एड्रेस है 11029 हैरी हाइंस बुलेवार्ड, बिल्डिंग ए, डैलस में है ऑब्वियसली ये. और अगर इट इज 75229, सो बेसिकली इट्स हैरी हाइंस बुलेवार्ड में रवीज इम्पोर्ट वेयर हाउस. एंड देयर दिस गोज स्मॉल टाउन गर्ल. कम मत समझिए स्मॉल टाउन गर्ल बॉय को.

ये मुझे बात अच्छी लगती है, उंगली पे नचाएगी तुम्हें। लेकिन स्मॉल टाउन गर्ल का क्या मतलब है? स्मॉल टाउन हो या लार्ज टाउन हो, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज दिस इज अ कंसेप्शन। दिस इज, बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं, यू आर लाइक दिस बिकॉज यू आर फ्रॉम दिल्ली, शी इज लाइक दिस शी इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, दैट पर्टिकुलर। एंड आई फील द लॉट ऑफ इट इज स्टीरियोटाइपिंग, द वी नीड टू समटाइम्स गेट आउट ऑफ दैट। ये गाँव का है, वो ये शहर का है, बट क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बार ये हमारे परसेप्शन होते हैं और सही नहीं होते। जैसे कि ये कहा गया है दैट यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव एंड स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। तो ये परसेप्शंस जो है ना, ये हमें शैलो कर रहे हैं, ये हमें होल्ड बैक कर रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं। बट लेट देम गो एंड जस्ट लिव द वे यू वांट टू लिव। एंड आई वांट टू अगेन से, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद अभी ज्वाइन किया होगा, वेरी हैप्पी ट्यूजडे इवनिंग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर ट्यूजडे इवनिंग जस्ट एज आई एम। Baro in the house.

0: सच्ची बात है, वी आर वेरी थैंकफुल टू काला चश्मा. आई मीन इस गाना नहीं, इन जनरल मुझे लगता है ये किसने बनाए ये काला चश्मा, गॉगल्स बोलते हैं या सन ग्लासेस, शेड्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट बोला जाता है, बट सच एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि सब पे जचता है. एंड दैट इज वॉट आई फील, कि धूप हो नहीं हो काला चश्मा, मुझे तो एक्चुअली चश्मे को ऊपर रख के लाइक इसको एक दैट इज माई सिग्नेचर स्टाइल, आई एब्सोल्युटली लव इट. मुझे पहनने से ज्यादा उसको ऊपर रख के आई फील लाइक यू नो व्हेन यू काइंड ऑफ लिफ्ट इट अप, थोड़ा सा सर पे ऐसे लगा के मुझे बड़ा स्टाइलिश लगता है. बचपन से जब मैं ऐसे थी तो आई यूज टू वॉच लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स डू दैट, और मैं सोचती जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं काला चश्मा खरीदूंगी, अच्छा बढ़िया ब्रांडेड पहनूंगी नहीं क्योंकि दुनिया क्यों काली देखनी है, दुनिया तो इतनी अच्छी है, प्यारी है, हमें ऐसे दुनिया को काले रंग से देखना मुझे पसंद नहीं है. मुझे लगता है दुनिया इतनी ब्यूटिफुल कलरफुल है दैट आई वॉन्ट टू वॉच द वर्ल्ड द वे इट इज. लेकिन ये काला चश्मा ऊपर लगा के थोड़ा सा स्टाइल जरूर मारने का अपुन का यानी कि पारो का मन करता था ना. आई डू दैट वेरी ऑफन, दिस इज माई सिग्नेचर स्टाइल. अगर आपको कहीं सड़क पे मैं दिख जाऊं एंड यू डोंट नो हु आई एम, लेकिन आपको ऐसे चश्मा ऊपर रखा हुआ मिले तो दिखे तो यू नो दैट हु आई एम. एंड विद दैट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट टूडे इज ऑल्सो वर्ल्ड, एक्चुअली नो इट इज नेशनल, वैसे तो बहुत सारे वर्ल्ड डेज भी हैं, बट दिस इज एक्चुअली वर्ल्ड डे, दिस इज नॉट नेशनल, ये खाली यूएस का नहीं है, ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है. दैट इज वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे. अगर आपके फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर दैट यू लव, यू मे वॉन्ट टू टेल दैम, अगर अभी तक नहीं बोला है तो कभी और बोल दीजिए, कि आज का दिन यानी कि May 19th इज फैमिली, वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली टू ऑनर द सेंट्रल रोल ऑफ फैमिली डॉक्टर्स इन हेल्थ केयर डिलीवरी. क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स तो कई बार बड़े बड़े अस्पतालों में होते हैं, मिलते भी नहीं है, लेकिन जो फैमिली डॉक्टर होता है दैट इज द मोस्ट एक्सेसिबल, समबडी दैट यू ट्रस्ट, दैट यू गो एंड मीट, एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन गो एंड टेक एन अपॉइंटमेंट. यू नो दैट्स समथिंग, द एक्सेसिबिलिटी एंड the family warmth जो होती है वो family doctor के साथ बहुत लोग feel करते हैं, and that is today's day. थोड़ी सी देर में लौटेंगे यहीं पर right here on the airwaves of Fun Asia Radio 104.9 FM. पारो in the house, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. Level 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. Level 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. Level 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
4: Chicken banana. Chicken banana?
5: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
6: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
7: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

वेलकम बैक एंड दोज हु आर रिटर्निंग होम वेरी वेलकम. मैं आपको कहना चाहती हूँ वेलकम पहले से ही बिफोर यू रीच होम बिकॉज इट्स अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग व्हेन आई एम रिटर्निंग होम. आई थिंक जब भी जो भी चीज़ें होती हैं पूरे दिन में टेंशन काम की और बहुत सारी ई मेल्स एंड दिस एंड दैट एंड वॉट नॉट बट वेन यू आर रिटर्निंग होम देर इज एक सुकून सा होता है घर में जो एक वार्म्थ वाली फीलिंग होती है घर में जाके आप आराम से चाहे आप कुछ भी ना करें बस जाके बैठ जाए that feels very relaxing and I hope that you all are those who are returning home are really feeling that excitement keh sakte hain but it is also a kind of like feeling calm. I think it's different for some people for excited but I actually feel kind of like a calm. Mujhe aisa lagta hai ki pura din to main bahut excited rehti hu lekin jab main ghar ki taraf aa rahi hoti hu aur ghar mein jab enter kar rahi hoti hu mujhe ek bada calm sa lagta hai jaise ki ab ye journey खत्म हुई समाप्त हुई. सो आई होप दैट यू आर फीलिंग हैप्पी इन वॉट एवर इमोशंस यू आर फीलिंग एंड इफ यू आर रिटर्निंग होम और अगर कहीं बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने जा रहे हैं कहीं परिवार के साथ एंड यू आर लिसनिंग टू अस आई होप दैट यू आर स्टिल एंजॉयिंग.

0: For those who are joining now, I want to wish you a very, very happy Tuesday. I hope you are enjoying. ऐसा कहते हैं मंडे को लोग गोल्स बनाते हैं और ट्यूजडे को इम्प्लीमेंट करते हैं. आई होप आपने थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन कर लिया हो. नहीं किया तो कोई बात नहीं, घड़ी में हुए 8:09, अभी भी टाइम है. यू कैन डू समथिंग दैट मेक्स योर ट्यूजडे वर्थ वाइल. फॉर इंस्टेंस यू कैन कॉल मी 972-235-5555 पर एंड वी विल प्ले द सॉन्ग दैट यू वांट टू लिसन टू एंड दैट विल मेक योर ट्यूजडे एक्स्ट्रा स्पेशल. इसको मैं बोलती हूँ चेरी ऑन टॉप. क्योंकि देखिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी ऐसी होती है कि हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं, मांगते हैं, ख्वाब देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, बचपन से लगा रहता है कि ये मिले वो मिले. हमेशा जो भी हमारे ख्वाब होते हैं कई बार पूरे होते हैं लेकिन बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू बी लेट्स से द हेड ऑफ एन ऑफिस और कोई भी आप जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप चाहते हैं, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी एंड व्हाटएवर, इट लॉट ऑफ टाइम्स दीज थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम और कई बार तो उसके बाद भी नहीं मिलती है. फनीशा रेडियो यू आर ऑन एयर.
1: Hello, this is Rajesh speaking. Namaste.
0: Namaste ji. You said Rajesh?
1: Raj.
0: Raj. Hello, Raj sahab. Kaise yaad kiya? Kaun sa gana sunenge?
1: Gana request karna tha.
0: Haan ji, boliye.
1: Akhiyon se goli mare.
0: Akhiyon se goli mare. Kisne mari goli akhiyon se?
1: Kisne to nahi mari.
0: अच्छा इंतजार में हैं आप. लेकिन वैसे बता दूं ये अखियों से गोली मारना बड़ा डेंजरस काम है. बट यस इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग.
1: तो नहीं करता हूं.
0: नहीं एक बात मैं बोलना चाहती हूँ राज साहब. ये एक इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी. अभी मैंने गोविंदा का गाना चलाया, आपने फिर गोविंदा का गाना रिक्वेस्ट कर दिया. लगता है गोविंदा के बड़े फैन है आप.
1: नहीं बात ऐसी है कि मैंने मिस कर दी वो गाना.
0: अच्छा अच्छा
1: तो मैं सुन रहा था आपको.
0: ये तो कमाल हो गया. मतलब इन्होंने सुना भी नहीं गोविंदा का गाना फिर भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया. गोविंदा के कितने सारे फैन है यार. बट फैन की अगर बात करें तो आई वॉन्ट टू से कि एक बहुत सारे हमारे जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं दैट वी शुड फील थैंकफुल एंड इसीलिए ये सारे दिन बनाए गए हैं. बहुत सारे एवरी डे देर इज समथिंग दैट इज वर्ल्ड में या नेशनल यूएस में ऐसे दिन बनाए गए हैं. किसने बनाए हैं? गॉड ब्लेस देयर सोल. के इस तरह के बिकॉज टूडे इज वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे. इफ यू हैव मैंने थोड़ी देर पहले उसकी बात करी थी. बट इफ यू हैव नॉट लिसनड आई डू वांट टू से दैट प्लीज रिमेंबर दैट टुडे. इफ यू हैव अ फैमिली डॉक्टर, इफ यू हैड अ फैमिली डॉक्टर बचपन से, हो सकता है कोई आपके पीडियाट्रिशियन रहे हो जब आप छोटे हो एंड एनीबडी हु हैज टेकन केयर ऑफ यू स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फैमिली डॉक्टर, यस दे डू अ लॉट. सो टुडे इज देयर डे टू शो हाउ मच दे हैव डन फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस. और इसके बारे में मैं आपको इससे मिलती जुलती बात है टेक्सस प्राइमरी केयर. और टेक्सस प्राइमरी केयर के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगी. फिलहाल मैं राज साहब का गाना लगा देती हूं, गोविंदा का अखियों से गोली मारे.

जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ, और जैसे थोड़ी देर पहले मैं राज साहब से भी कह रही थी जिन्होंने इस गाने की फरमाइश करी कि ये बड़ी डेंजरस अखियाँ है, क्योंकि मैं इस बारे में सोचती हूँ, पता नहीं क्यों मैं लिरिक्स को बड़ा सीरियसली लेती हूँ लिखने वालों ने शायद इतना सीरियसली नहीं लिया होगा जितना पारो लेती है उनको सुन के, और मैं हर बार ये चीज़ सोचती हूँ कि भाई ये जो अखियाँ हैं, ये जो दोनों एक दूसरे को अपनी अखियों से गोली मार रहे हैं, और हो सकता है बाकी और भी दुनिया में लोग हों जो अखियों से गोली मारते हों, क्या उनके पास लाइसेंस है? बस लाइसेंस होना चाहिए, गोली मार रहे हैं चलिए वो अलग बात है, लेकिन लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रही थी कि इट इज़ वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे, तो उसके बारे में बात हम कर चुके हैं, विच इज़ May 19th। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट टू यू बाई टेक्सस प्राइमरी केयर। 13 years से, फॉर द लास्ट 13 years, टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर अवर कम्युनिटी, एंड नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन। जी हाँ, उन्हीं की लोकेशन है, और उन्हीं की सेकंड लोकेशन है, और उन्हीं का एक नया नाम है, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग लनक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। लनक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ। दे आर ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट इज नीडेड। आजकल की जिंदगी में जहां इतने हर चीज के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होता है, यहां पर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले मैं ये कह रही थी कि हम बहुत सपने जो होते हैं, हम बहुत बहुत जद्दोजहद करते हैं ये शायद मैंने थोड़ा सा ये जो वर्ड है शायद थोड़ा सा मैंने इसको तोड़ मड़ोड़ दिया, बट यू गेट इट राइट। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं तब जाके हमारा शायद सपना पूरा होता है, कई बार तो पूरे भी नहीं होते। बहुत सारे मेरे भी बचपन के सपने हैं जो अभी भी कहीं क्लॉजेट में पड़े हुए हैं, मैं उनको हर साल जो है ना न्यू ईयर के टाइम पे थोड़ा सा झाड़ पोंछ देती हूँ कि कभी तो ये इनके साकार होंगे और इनको अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल मिलेगी। लेकिन मुझे चीज बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आप फनीशा पे कॉल करती हैं, अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं, आई एब्सोल्युटली लव दिस, लेट मी टेल यू दिस, आई कांट स्ट्रेस इट एनी मोर, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगती है। अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं जिस वक्त आप सुनना चाहते हैं, हम उस वक्त चला देते हैं। यार ये हम एटलीस्ट सारे सपने आपके नहीं पूरे कर सकते, लेकिन एक गाना सुनने का जो आपका सपना है इस वक्त, वो पूरा कर सकते हैं। आई फील वेरी हैप्पी टू से दैट।

0: पटोला, वेरी फेमस वर्ड. फनिश रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: जी एक गाना लगा दीजिए.
0: हाँ जी बोलिए.
1: तुझे याद ना मेरी आए किसी जब क्या कहना.
0: ओहो हो, ये तो आपने बड़ा सैड वाला गाना लगा दी, बता दिया. जनाब नाम क्या आपका?
1: मेरा नाम है सलमान.
0: सलमान जी, सलमान आपका नाम और आपने गाना तो सलमान खान साहब का नहीं बताया. नहीं मैं चलाती हूँ. आप शाहरुख खान के फैन लगते हैं. आप पहले मेरे ख्याल से ऐसे सलमान होंगे जो शाहरुख के फैन है.
1: असल में एक हिस्ट्री है इस गाने के पीछे ना. एक मिनट की मैं आपको क्विक बता सकूं. मैं रहता था न्यूजीलैंड एक जमाने में,
0: न्यूजीलैंड
1: में.
0: अच्छा.
1: तो मैं घूमता फिर रहा था तो एक चाइनीज की दुकान नजर आई मुझे. वहां पे पोस्टर लगे हुए थे तो मैं समझा कि देसी दुकान है, वो चाइनीज की थी. तो वो ऊपर सिनेमा था तो कोई मूवी लगी हुई थी, पता नहीं वो उस लड़के की थी शायद जो बाजीगर में था. अभी बात हो रही है जब जब ऊपर मूवी देखने गया तो कुछ कुछ होता रिलीज हुई थी उस वक्त. तो वो ऐसा स्पेशल मूवी इतनी कैजुअली घुस के सरप्राइजिंग मिली और सिनेमा में इस गाने की जरा बहुत हाई पिच लगी थी और गाना भी जबरदस्त है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. मेरी भी कुछ कहानी है, कुछ कुछ मेरी भी कहानी है. थोड़ी देर में बताती हूँ कुछ कुछ होता है कि
1: अभी बता दें, मसला नहीं.
0: नहीं आशा करती हूँ. मैं गानों की बड़ी लंबी लाइन है बट मैं डेफिनेटली बताऊंगी. थैंक यू सो मच सलमान साहब फॉर कॉलिंग.
1: ओके.
0: सलमान साहब से पहले एक और कॉल आई थी तो मैं उनका गाना लगा देती हूँ शरारत. और उसके बाद कुछ कुछ होता है वाला गाना भी लगाएंगे एंड अपनी भी कहानी बताऊंगी मैं. अगर आपकी कोई कहानी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कॉल कर सकते हैं 9723555555. Paro in the house.

मेरी कहानी कुछ ऐसी है, कुछ कुछ होता है कि क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी जब सलमान साहब ने अपनी कहानी बताई, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो मैं उस समय बहुत एंटी बॉलीवुड मूड में चल रही थी और मैंने कहा कि ये सारी फिल्में एक जैसी होती हैं, सबकी कहानियां एक जैसी होती हैं, मैं बॉलीवुड त्याग रही हूँ, मैं फिल्में देखूंगी नहीं एंड आई एम गोना डू समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग क्रिएटिव, मतलब ट्रूली क्रिएटिव, बॉलीवुड वाला शोशाबाजी नहीं. सो आई एक्चुअली बॉयकॉटेड दिस फिल्म. मैं नहीं थिएटर में देखने गई, सबने कहा बहुत अच्छी है, देखने के बाद भी लोगों ने बोला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. मैंने कहा नहीं नहीं यार, वही होगा, वही रेगुलर लव स्टोरी होगी. बट आई वॉच्ड इट लेटर, आई थिंक बाद में पता नहीं कैसे मैंने देखी, बट आई रियली फेल्ट कि काफी अच्छी एक्टिंग तो खैर बहुत ही अच्छी है, स्टोरी भी उस टाइम पे तो बहुत ही अच्छी लगी थी. अभी शायद थोड़ी सी डेटेड लगे लेकिन उस टाइम पे सच में बहुत अच्छी लगी थी. और लेट्स लिसन टू सलमान जी का ये गाना. और इस गाने के चलते चलते हम एक छोटे से ब्रेक में चले जाएंगे. अगर आप जहां जा रहे हैं वहीं जाते रहिए, लेकिन डायल को 104.9 FM पर रखिए, क्योंकि पारो तो इधर ही है 9 बजे तक.

0: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
1: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
3: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डालस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route. Rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
8: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
7: क्यों?
8: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
7: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट।
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
10: मुबारक ईद मुबारक।
11: Is hosting Grand Chandrat Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Events Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50+ boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids rides, henna artists and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5255.

A very happy Tuesday evening to you all and thank you so much जो मुझे काफी देर से सुन रही हैं काफी देर से झेल रही हैं पारो को क्योंकि आप लोगों के साथ 6 बजे से चल रही है ये पारो की गाड़ी आज थोड़ा सा जल्दी आई थी मैं और 9 बजे तक रहूंगी आप लोगों के साथ यानी कि दिस इज द लास्ट 30 minutes 30 मिनट से थोड़ा सा कम है ऑफ आवर शो एंड वी आर गोना डू अ गिव अवे एज वेल इन अ लिटिल बिट एंड आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग ऐसा मुझे ऐसा सुनने में आया दैट रेस्ट ऑफ द वीक इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ लिटिल बिट सिमिलर टू द वेदर as today yani ki bahut zyada garmi nahi hogi so people who enjoy really pleasant weather well good news for you

इट्स अ वेरी एक्चुअली गुड फिल्म. अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई वांट टू टेल. गाना तो खैर बहुत अच्छा है ही, बट मृत्यु दंड एंड इट्स वन ऑफ द फिल्म्स दैट आई रियली लव्ड माधुरी दीक्षित्स एक्टिंग. शी इज एन एंटरटेनर, बहुत अच्छा डांस करती हैं और जो भी उनकी फिल्मों में एक्टिंग की, जैसे राम लखन या इस तरह की जो भी फिल्में हैं उसमें जैसे भी रोल में एक्टिंग की जरूरत होती है वो करती हैं. बट वेन इट कम्स टू लाइक रियली गुड एक्टिंग एंड अ वेरी फेमिनिस्ट रोल, वो इस फिल्म से उनकी शुरुआत हुई थी, आप ये कह सकते हैं. बाद में और भी करे हैं उन्होंने एंड बट दिस इज द फिल्म इन विच शी, अयूब खान है इसमें, लेकिन अयूब खान ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस यही बोलूंगी कि माधुरी दीक्षित इज द मेन कैरेक्टर. सो शी इज द हीरो, शी इज द हीरोइन एंड वेरी पावरफुल एक्टिंग, वेरी गुड एक्टिंग. सो रियली लव्ड, बहुत अच्छी फिल्म है. एंड विद दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टेल यू अबाउट लॉट ऑफ यू मस्ट बी ड्राइविंग एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू ड्राइव सेफ एंड आई वॉन्ट टेल यू बहुत सारे जगहों पर रस्ते भी बंद हैं एंड देर इज अ लॉट ऑफ यू नो issues with lane closures and all that. So I do want to tell you that the segment is brought to you by Omar Khwaja with traffic updates around DFW and accident report. And if you're involved in a car or truck accident or a slip or fall incident, hopefully not, but if that happens, attorney Omar Khwaja will fight your case and get you the help that the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies can be stressful, so you need an attorney that will make sure you are compensated. Aap unhe pay nahi karte hain jab tak aap jeete nahi hain. Iska matlab aap unhe call kar sakte hain for free consultation. Number hai unka 469-300-5046 or you can visit their website, which is attorneyomar.com.

0: And I also want to say thank you so much apna banane ke liye, because I absolutely love when I got your calls aur bade hak se aap log baat karte hain. Mujhe acha lagta hai bhai, paro ye gana chala do meri pasand ka. Nahi, aise nahi keh rahi hu. I know you talk very nicely and very pleasantly, but what I mean is that apna samajhte hain tabhi phone karte hain, tabhi farmaish karte hain. Aapko pata hai hum chalayenge, hame acha lagega aapki farmaish chalane mein. And this is such a beautiful relationship. Jaise kehte na apna bana le, to mujhe aise hi kuch हमारा रिश्ता लगता है एज एन आर जे एट दिस रेडियो स्टेशन. एंड देन यू आर लिसनिंग एंड कॉलिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरीज, क्योंकि अपने से ही आप शेयर करते हैं. किसी आप स्ट्रेंजर से जाके तो नहीं सड़क चलते किसी को बोलते हैं भाई सुनो भी मेरी कहानी सुनो ये तो तुम्हें पता है मुझे ये गाना पसंद है वो बोलेगा मुझे क्यों बता रहे हो यार लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते, हमें बड़ा अच्छा लगता है. हमें कहानियां बड़ी, और पारो को तो स्पेशली कहानियां बहुत अच्छी लगती है. आई लव स्टोरी. सो इफ यू हैव एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू एवर वॉन्ट टू शेयर, आई वॉन्ट यू टू नो that you can always call me. Kal bhi aaungi aap logo se baat karne 7 se 9. If you have any interesting story, I am a big lover of stories. Mujhe bahut hi acha lagta hai aur main batana chahti hu kyunki bahut sari kahaniyan hain jo maine apne andar sama ke rakhi hui hain, sambhal ke rakhi hui hain, and I sometimes remember that those stories. So thank you so much for all that. And with that, I hope you're enjoying your wonderful Tuesday evening. हमारे पास एक कॉल आया है. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर. देखिए, सुन लिया आपने मेरी बात और कॉल कर दिया.
1: नाइस मैडम, नाइस शो, एंजॉयिंग इट व्हाइल ड्राइविंग.
0: थैंक
1: यू फॉर एंटरटेनिंग अस.
0: थैंक यू.
1: एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
0: हाँ जी, बिल्कुल जी.
1: मुझे जब भी मेट का नगाड़ा चाहिए एक सॉन्ग.
0: नगाड़ा? मुझे लगा वहां से जाके नगाड़ा लाऊं आपके लिए. हमने कहा नगाड़ा चाहिए कहाँ मिलेगा नगाड़ा, लेकिन गाना जरूर चला दूंगी सर आपके लिए. नाम क्या है सर आपका?
1: आनंद. आनंद?
0: हाँ जी,
1: आनंद.
0: आनंद सहा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा. बड़ा आप, आई एम होप आप इंजॉय कर रहे हैं हमारा शो बड़े आनंद के साथ. आप तो हमेशा आनंद के साथ ही रहते हैं. कितनी भी परेशानी हो दुनिया में, वॉर हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन आनंद साहब हमेशा आनंद के साथ ही रहते हैं. राइट,
1: एंजॉय करना चाहिए बस.
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच आनंद साहब.
1: टेक केयर.
0: देखिए, नाम बहुत बड़ी चीज है. राइट, अगर नाम बढ़िया हो तो मुझे लगता है शाम इस वक्त भी बढ़िया ही जा रही होगी आनंद साहब की. ये तो लगता है कुछ और गाना लग गया, बट डेफिनेटली आई विल बी प्लेइंग योर सॉन्ग आनंद साहब. आई फाउंड इट नगाड़ा.

बहुत बढ़िया, नगाड़ा बज गया है. अब दूसरी चीज बजने चलने वाली है, वो एक गाना चलाऊंगी, लेकिन वो गाना इरफान खान से जुड़ा हुआ है एंड उसी से जुड़ा हुआ है हमारा गिव अवे. और गिव अवे के साथ पहले, गिव अवे के पहले मैं ये बता देती हूँ दैट प्लीज कनेक्ट विद अस ऑन सोशल मीडिया. फनिशर रेडियो के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम. और पारो के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रिंसेस पारो 27 एज वेल एज ऑन फेसबुक दैट इज पारो कौशिक. और बहुत अच्छा लगता है हमारे लिसनर्स जब कनेक्ट होते हैं. एंड इफ यू हैव सम पर्टिकुलर थीम इन माइंड दैट यू वांट मी टू टॉक अबाउट और एनीथिंग, आई रियली लाइक दैट. इट्स अ नाइस कनेक्शन दैट वी हैव ऑफ एयर एज वेल. सो यस, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अलॉन्ग विद मेनी अदर सोशल साइट्स इज द न्यू वे टू कनेक्ट विद रियली एनीथिंग दैट यू वांट टू कनेक्ट विद. लेकिन अपने आप से कनेक्ट करने के लिए जरूरत होती है थोड़ी सी साइलेंस की, थोड़े से प्यारे म्यूजिक की और थोड़े अच्छे दोस्तों की और अच्छी बातों की. अच्छी बातों की अगर बात करती हूं तो आई थिंक अबाउट अ फ्यू एक्टर्स हु आर रियली हैव नॉट ओनली डन रियली एक्सीलेंट एक्टिंग बट ऑल्सो वेरी प्रोफाउंड ह्यूमन बीइंग्स. यानी कि मतलब बहुत ही ऐसी बातें करते हैं, ऐसी इस दुनिया से परे हटे ऐसी बातें करते हैं. आई मीन जस्ट रियली वेरी वाइज. एंड आई थिंक ऑफ दैट व्हेन आई थिंक ऑफ इरफान खान. इरफान खान साहब को बहुत लोग एक्टर की तरह जानते हैं बट ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. उनकी बातें अगर आप सुने, उनके बहुत सारे मैंने उनके इंटरव्यूज देखे और मैं ये सोचती हूँ यार ये बंदा क्या था. मतलब अगर ये बंदा बहुत कम उम्र में चले गए, ही वॉज ओनली 53 व्हेन ही लेफ्ट इन 2020, लेकिन अगर लंबा जीते और उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों के बाद अब नेक्स्ट लेवल. आई थिंक बहुत सारे उनके जेन्युइन बहुत फॉलोअर्स, अभी भी बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे फॉलोअर्स है, लेकिन एक्टिंग से आगे भी मुझे लगता है लोग उनको फॉलो करते बिकॉज द थिंग्स ही यूज टू से. ही वॉज वेरी वेल रेड, वेरी फिलोसफिकल और मतलब बहुत अच्छी बढ़िया बातें करते थे. और बढ़िया की अगर बात करें तो बढ़िया खाने की बात करनी चाहिए, विच इज वन पिज्जा किचन, जहां मिलेगा आपको इफ यू आर क्रेविंग विद समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट अपनी पसंद का पिज्जा. वन पिज्जा किचन इज वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. फॉर ऑल माय वेजी लवर्स लाइक मी, ट्राई द अचारी पनीर पिज्जा पैक्ड विद द टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. और मीट लवर्स के लिए तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन straight from the tandoor to your taste buds. So whether you like it bold or beautifully balanced, there is a slice waiting just for you at Fun Pizza Kitchen. Details ke liye aap ja sakte hain funpizzakitchen.com. agar aapko $10 gift card jeetna hai, what you have to answer main aapko batati hu, lekin usse important do cheeze. ek to ye that you will need to go to the Frisco location to pick it up. So that is one thing. If you can do that, definitely participate. If not, then give the chance to somebody else. And if you have already won this gift card in the last 1 month, well, then give the chance to somebody else because that disqualifies you. But if not, well, you are in. You are in. सवाल है, इरफान खान साहब की जर्नी बड़ी रॉकी रही है. यानी कि इतने बड़े फिल्म स्टार इंटरनेशनली बन गए वो और बिल्कुल पीक पे थे अपने करियर के. उनका करियर एकदम टेक ऑफ हो गया था जब वो इस दुनिया से चले गए. लेकिन एक सच्ची बात ये है दैट ही स्ट्रगल्ड क्वाइट अ बिट. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने ग्रेजुएट किया, बहुत एकोलेड्स मिले उन्हें एक्टिंग के लिए, लेकिन उसके बावजूद बॉलीवुड में और मीडिया स्क्रीन वगैरह पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. तो उनकी अगर स्ट्रगलिंग की दुनिया से के टाइम से आप मुझे बताइए कि उनकी पहली फिल्म जिसमें उन्हें बहुत छोटा सा रोल मिला था, फिल्म बहुत बड़ी थी, बहुत फेमस थी, लेकिन रोल बड़ा छोटा था. दैट वाज हिज डेब्यू फिल्म, नॉट एज अ मेन हीरो बट जस्ट हिज फर्स्ट फिल्म अपीयरेंस. बहुत छोटा सा रोल लेकिन अभी भी लोग उसको वापस जाके देखते हैं फॉर इरफान खान. That is Irfan Khan. कौन सी फिल्म थी आप मुझे बताना है. 972355555 अगेन द फर्स्ट फिल्म ऑफ इरफान खान. थोड़ी सी और हिंट दे देती हूँ, 1980s की फिल्म की बात हो रही है.

आनंद साहब, देखिए आनंद साहब की गाना भी लग गया और आनंद साहब वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर. सलाम बॉम्बे नाम है फिल्म का, बहुत पॉपुलर फिल्म है, लेकिन छोटा सा रोल था बस, कैमियो समझ लीजिए उनका, इरफान खान साहब का, क्योंकि उस वक्त उनको कोई नहीं जानता था. उसके बाद टीवी सीरीज में मैंने उनको देखा है और मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगी, जो मुझे बचपन का याद है, बिकॉज 80s और 90s में वो कुछ कुछ सीरियल्स में, एक श्रीकांत आता था, भारत एक खोज आता था, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स टीवी सीरीज में वो आए, लेकिन फिल्मों के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और काफ़ी उनको छोटे छोटे रोल्स के बाद वो इतने ज्यादा फेमस हो गए. लेकिन उनकी कुछ डायलॉग्स हैं फिल्म के, और वो डायलॉग्स लोगों को मुझे लगता है शायद इसलिए भी ज्यादा पसंद आते हैं बिकॉज उनमें बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ से वो फील करते थे, बहुत डीपली फील करते थे, और जो वो फील करते थे वो उनके इमोशंस, उनके बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं, और उनकी जो डायलॉग्स के अलावा उनके बहुत सारी जो उन्होंने बातें करी हैं उसमें शो करता है. एक मुझे उनका बहुत ही अच्छा लगता है लाइफ ऑफ पाई का, आई सपोज इन द एंड द होल ऑफ लाइफ becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a time to say goodbye. देखा आपने जिंदगी क्या है, जिंदगी है कि छोड़ो, छड्डो यार, दैट इज वॉट द मीनिंग इज. ये जिंदगी में हम सारी जिंदगी बटोरते रहते हैं, लेकिन इन द एंड इट इज ऑल अबाउट लीव इट इन एन मोमेंट. कई बार तो गुड बाय कहने का भी वक्त नहीं मिलता और एक मोमेंट में सब कुछ लेटिंग गो हो जाता है. यू जस्ट लेट गो एंड दैट्स इट. एकदम छू मंतर, जस्ट अ ब्यूटिफुल डायलॉग, एक फिल्म का डायलॉग है. एंड पर बहुत सारी उन्होंने बातें करी, उन्होंने ये भी कहा है एक अपने एक उनकी, मतलब इट इज नॉट अ डायलॉग बट समथिंग दैट ही हैज सेड विच बहुत प्रोफाउंड बातें करते थे. इट पेन्स मी व्हेन अ फिल्म एक्टर और अ क्रिकेटर इज अ यूथ आइकॉन. आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, दे आर ग्रेट एंटरटेनर्स एंड आर यूजफुल टू द सोसाइटी बट दे आर नॉट हीरोज. मतलब बहुत ही सुलझे हुए इंसान, एंड आई एम थिंकिंग दैट मे बी आई शुड गो एंड वॉच वन ऑफ हिज फिल्म्स, बट विद दैट आई डोंट वांट टू से आई रियली एंजॉयड अ लॉट विद यू ऑल. 6 बजे से चल रही है हमारी ये गाड़ी, कल भी होगी मुलाकात आप लोगों के साथ, एंड विद दैट आई वांट टू से आरजे पारो साइनिंग ऑफ.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: सब कुछ साफ रख सकते हो,
6: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
7: क्योंकि ये कौन बोला?
6: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
8: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
9: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस.
10: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 9455270897, or visit astrologerishwar.com.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
13: डैलस, आर यू रेडी फॉर अ मिनी इंडिया इन वन इवनिंग? ऑन संडे May 31st, 3 PM टू 9 PM, जॉइन अस एट द हैगर्ट पार्क प्लेनो नियर डाउनटाउन फॉर द अंबुज बसंत मेला, पावर्ड बाय बाना. लाइव परफॉर्मेंसेस, रैफल प्राइजेस एंड touch the truck from 4 to 5 PM. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basan Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization, NDAW.
12: For booth and sponsorship contact, admin@ambuj.us.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
3: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
2: के टू ड्राइव मतलब
3: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
2: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
3: 100%
4: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner. Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
9: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फनेजा रेडियो के संग।

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: From Chennai to Dharavi, total galiji machi modi na kani kali. Goli soda pole enna seendi na ka pongu ga. Hip hop la engala paru uru pulla tar mar tar mar. Aa ede.

0: क्लास शुरू करें?
1: रुको जरा, सबर करो।
2: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के. डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फन एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।
1: परदेसिया है तेरे प्यार में जब से,

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना
0: है। अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

तुम्हारे गम की डली उठाकर ज़बां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपरहिट
4: Hi, this is Kunal Kapoor, and you're listening to Fun Asia Radio.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Tune sunte hi brand click kar gaya na. Just like that, when it comes to taxes, only one name pops up. AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: The Magic 24/7, only on 104.9 FM.
1: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
3: Astrology readings for guidance only and results may vary.
4: Hi, I am Shahrukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग। देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया. व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक.
2: अच्छा, कौन सा, वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए.
2: अशरत, सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा. हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन. शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है, कम ऑन, गेट रेडी.

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।

0: आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोग

0: वाला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

Yeah. Fun Asia 101.

Funny Show Radio 104.5.

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: The gorgeous twins Sukriti and Prakriti ready to drop their biggest song of the year. The footage of the video being shot has leaked.

0: waved outside Beijing's opulent Great Hall of the People in much the same fashion as President Trump last week, complete with chanting children and military fanfare. And the Chinese leader hailed ties with Russia as a force of calm amid chaos during this meeting with President Putin in Beijing today. We do have also Prime Minister Modi's penchant for not taking questions during interactions with the press that did not go down well with journalists in Norway who wanted to quiz the visiting dignitary. I'll have more news for you in the next hour of the program.
1: कभी-कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाएं
2: Astrology readings of our guidance only under
3: suspicion. Breaking news! Home loan या refinance अब और भी आसान. MyFamilyHomeLoan.com देता है transparent pricing, no hidden fees, no surprises. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI powered platform real time rates compare करता है, ताकि आपको मिले better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, हजारों families का भरोसा. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
5: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
4: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपरहिट
6: रितेश कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा
7: अरे रिलैक्स सब तुम्हारा ही तो है
6: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा
7: वेट व्हाट
8: यस अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है
9: Hi, this is Deepthi Varma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में The right way with estate planning.
8: अगर आपके पास सिर्फ will है या कुछ भी नहीं है तो ये call delay मत कीजिए Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
10: ओए होए भाई एक और नई गाड़ी सच बता लॉटरी लगी है क्या
11: लॉटरी नहीं यार अच्छी क्रेडिट थी जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी
10: के टू ड्राइव मतलब
11: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है
10: वाह मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ
11: 100%
12: नई हो या पुरानी लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402 केटो ड्राइव डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर
13: सब कुछ साफ रख सकते हो
14: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
15: क्योंकि ये कौन बोला
14: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पॉलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
16: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 9728772500
17: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
18: Bhooke lagi, zoro ki.
19: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है
20: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग
21: अ क्विक बाइट अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream home for
6: email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender. NMLS 334616. Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
8: अरे सारे तो सेम है.
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
8: ओ हाँ, ये तो अलग है.
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: Is sheher ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhua dhua. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
11: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
12: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी.
13: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
14: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
15: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
16: Mama, koshish to kar raha hu par samajh mein nahi aa raha.
15: रोज का सेम प्रॉब्लम.
17: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
18: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग.
17: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
19: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
20: मामू, देखो क्या हो गया.
21: ओ, क्या हो गया?
20: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
21: ओए, जर्मन का कमाल है.
20: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
21: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन. मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
9: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
22: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
23: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
9: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi.
13: साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
0: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
1: We will be getting you the world news in this hour of the program about halfway, let's say at about 8:30. But right now, ladies and gentlemen, I have some stories from the annals of history that happened on the 20th of May. Portuguese explorer Vasco da Gama becomes the first European to reach India via the Atlantic Ocean when he arrives at Calicut on the Malabar coast. He sailed from Lisbon in Portugal, rounded the Cape of Good Hope and anchored at Malindi in the east coast of Africa. With the aid of an Indian merchant that he met there, he then set off across the Indian Ocean. And reached India on today's date in the year 1498. And in 1506, the Italian explorer Christopher Columbus died in Spain, the first European to explore the Americas since the Vikings set up colonies in Greenland and Newfoundland in the 10th century. Christopher Columbus died on today's date in 1506. He was a master navigator and admiral whose four transatlantic voyages opened the way for European exploration, exploitation and colonization of the Americas. Long been called the discoverer of the New World. Upset by the Boston Tea Party and other blatant acts of destruction of British property by American colonists, King George III of England gives his royal consent to 3 out of 4 of the coercive acts to the outrage of American patriots on today's date in 1774. These series of laws established by the British government aiming to restore order in Massachusetts and punish Bostonians for their Tea Party, in which members of the revolutionary-minded Sons of Liberty boarded 3 British ships at Boston Harbor and dumped 342 crates of tea, nearly $1 million worth in today's money, into the water to protest the Tea Act. And on today's date in 1784, the Netherlands yielded to Great Britain some of its holdings in India and Indonesia in a treaty that was signed as part of the Peace of Paris, a collection of treaties that concluded the American Revolution. William George Fargo was born on today's date in 1818 in New York. The American businessman, one of the pioneering founders of Wells Fargo and Company. And in 1862, President Abraham Lincoln signed the Homestead Act, which provided 160 acres of public and virtually free of charge land to those who had lived on and cultivated the land for at least 5 years. On today's date in 1873, San Francisco businessman Levi Strauss and Jacob Davis are given a patent to create work pants that were reinforced with metal rivets, marking the birth of one of the most famous garments, the blue jeans. On this day in 1873, that patent for trousers reinforced with rivets, the origin of the jeans.

0: We have some messages coming up for you from our other sponsors, and we will have the world news also headed your way and some events happening here in town. We have all that coming up. Lots of information and plenty of music lined up.
1: Heere moti main na chahu.
2: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo, kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho, ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं ही तो।
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: अपनी roots भी और Texas का swag भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। Royal Sona Masuri Rice हो, नानक पनीर हो या Parle Ji biscuits, वही देसी taste जो दिल को घर जैसा feel दे। और साथ ही HEB के exclusive Texan favorites, जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही trip, एक ही store और सारा सामान done। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
16: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: की कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से एट 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन द रिसोर्स में वेरी।
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां।
6: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फनेजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। Call Ambreen at 214-909-6601
7: or visit their Instagram, Ambreen Salon, located at Allen and Frisco.
6: Ambreen Salon, style that moves with you.
8: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
9: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: बेटा इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
3: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
2: रोज का सेम प्रॉब्लम।
4: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
5: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
6: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
7: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनएशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। लुमडी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल।
8: सब कुछ साफ रख सकते हो
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
10: क्योंकि ये कौन बोला?
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
11: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
14: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
15: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
16: Excuse me, it's called being loyal.
15: It's called being predictable.
16: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
15: And what's so special at Neon Cactus?
16: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
15: Not bad.
16: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
15: Okay, this I didn't expect from you.
16: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
17: An accident changed my life overnight. The pain made even simple things hard, and taking care of my family felt impossible. I was stressed, scared, and didn't know where to turn. Luckily, I found Omar Khwaja and team. They listened, treated me with respect, and explained everything clearly. They stood by me every step of the way. If you have been injured in an accident, you don't have to face it alone. Call the law offices of Omar Khwaja today. Because of them, my family and I can finally move forward.
14: Call now to 833-GET-OMAR. The law offices of Omar Khwaja. Your rights, their responsibility.
18: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
14: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
19: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
20: An extended show for you this morning. I'll be here till 11 o'clock on the airwaves of the Fun Asia Network on this lovely Wednesday morning. Ladies and gentlemen, it's the 20th of May today.

0: At the George W. Bush Presidential Center at SMU, they're celebrating America's 250th anniversary with a series of special exhibits and events that bring rare pieces of U.S. history to North Texas. Tomorrow, ladies and gentlemen, is the last day, and visitors can see Opening the Vault, a partnership with the National Archives and Records Administration. And this limited-time display features original historical documents rarely seen outside Washington, D.C., including the Treaty of Guadalupe Hidalgo from 1848, the Treasury Warrant from the Purchase of Alaska, and the Deed of Gift for the Statue of Liberty, as well as Thomas Edison's light bulb patent drawing. All this at the George W. Bush Presidential Museum, and tomorrow is the last day for some of these. With Eid just around the corner, Grand Bazaar hosting a Grand Chandrat Super Sale Eid Expo. It's happening next week on Tuesday, the 26th, at the Frisco Hall Event Center from noon to midnight. 12 hours. Frisco Hall at 121 in Independence Parkway. More than 50 boutiques from different states, variety of food vendors, food trucks, kids' rides, henna artists, and plenty more. Free entry, free parking, and for more booths and sponsorships, you can call or text well-known Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain. Let me give you her number, 214-592-5259, 214-592-5259, for more information or to get a boutique at this Grand Bazaar, the Chandrat Mela, on the 26th. On the 31st, BAPS Charities in the Morning are having their 2026 Walk or Run, all in the spirit of service. This annual event is more than just a gathering. It's a platform to unite for the greater good and make a lasting impact. On the 31st of this month, bapscharities.org/Dallas to register. It's a 3K walk through the heart of Irving. Starting from the Levy Event Plaza, this annual turnout has been over 1,400 walkers from the greater Dallas area. Interactive corporate booths featuring information and giveaways. Levy Event Plaza on the 31st. Also happening on the 31st, Ambuj Basant Mela, powered by Bana. On Sunday the 31st from 3 p.m. till 9 p.m. at the Haggard Park in Plano. That's right near downtown Plano. Live performances, raffle prizes, touch the truck from 4 to 5, free entry, free parking. And a variety of foods, Bihari Litti Chokha, Bengali, Marathi, Konkani, Gujarati, lots of food. Tamil, Telugu, Karnataka, Uriya foods, Rajasthani, Punjabi, Haryanvi. Last but not least, Sindhi food also out there.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने. ये ये ये देखो ये वाला.
2: ओह हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
5: के टू ड्राइव मतलब
6: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब के टू ड्राइव हैंडल करता है.
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
7: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-04 02. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
15: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
1: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
1: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
1: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
3: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है
4: प्लान या होप
3: मतलब है
4: प्लान मतलब स्ट्रेटजी होप मतलब देखते हैं क्या होता है
3: ओके तो मेरा वाला होप है
4: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं
3: क्यों
4: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है
5: वेल्थ टैक्टिक Retirement planning with clarity and strategy. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
6: Chicken banana.
7: Chicken banana?
8: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
2: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
9: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone.

A very good morning, Dallas. मैं हूँ आरजे सिमी, aka आरजे देसी गर्ल. I know कि आप सब आरजे मिट्टू जी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने और आपसे बातें करने के लिए इस सेगमेंट में, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब सी है और इसका जो है ना सारा का सारा दोष हम डैलस पे डाल सकते हैं. मतलब डैलस का वेदर इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि मैं क्या बताऊं. वैसे एक और चीज है जो काफी अनप्रेडिक्टेबल रही थी 90s और 2000 के किड्स के लिए, और वो है इंटरनेट. हाँ, मतलब 90s या अर्ली 2000s में हमें कहाँ पता था कि जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं उसका रूप रंग इतना ज्यादा बदलने वाला है बस कुछ ही सालों में. तो आज का शो है उन लोगों के नाम जिन्होंने इंटरनेट का असली स्ट्रगल देखा हुआ है. मतलब आज के किड्स को क्या ही पता यार कि वाईफाई कनेक्ट होने के लिए हम प्रेयर्स किया करते थे और इंटरनेट चलाने से पहले मम्मी चिल्लाती थी, फोन मत यूज करना, नेट चल रहा है. आज का पूरा शो डेडिकेटेड है उस गोल्डन एरा ऑफ इंटरनेट को. ऑर्कुट स्क्रैप्स, याहू मैसेंजर्स, ब्लूटूथ से गाने भेजना, कॉलर ट्यून्स, साइबर कैफेज और हर वो लेजेंडरी नोकिया रिंगटोन्स. ओ माय गॉड, मतलब मुझे तो सुनते ही पूरा नॉस्टैल्जिया हो गया. अगर आपको याद है कि आपका यू नो अर्लीस्ट इंटरनेट मेमोरी क्या रहा है तो आप मुझे कॉल करके बताइए 972-235-5555 पे, और अच्छे अच्छे गाने एंजॉय करते रहिए.

दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 90s और 2000s के इंटरनेट, गोल्डन इंटरनेट एरा की। और आजकल तो लोग बहुत बोलते हैं कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, लेकिन उस टाइम लाइक इन द 90s एंड अर्ली 2000s इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से भी इम्पॉर्टेंट एक चीज हुआ करती थी और वो था Orkut और उसके टेस्टिमोनियल्स। और जिसकी डीपी पे सबसे ज्यादा कमेंट्स होते थे वो समझ लो अपने स्कूल या मोहल्ले का सेलिब्रिटी तो है। और अगर आपने Orkut पे रिलेशनशिप स्टेटस चेंज करी, मतलब ऑफिशियली आप दुनिया को बता देना चाहते हो जो आजकल इंस्टाग्राम पे हार्ड लॉन्च जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल वही जी। और याहू मैसेंजर की तो बात मत कीजिए, मतलब उस पे इनविजिबल रह के ऑनलाइन रहना वो भी एक निंजा स्किल थी अपने टाइम की। और बात करें अगर फोन के रिंगटोन्स की तो वो पर्सनालिटी का पार्ट हुआ करती थी। मतलब किसी को आप कॉल कर रहे हैं तो नोकिया की ट्यून सुनाई दे रही है, लेकिन किसी किसी के पास कॉलर ट्यून हो, और जिसके पास कॉलर ट्यून्स होती थी समझ लीजिए कि अरे बंदा ये तो कूल वाले लोगों की कैटेगरी में है। मतलब मुझे याद है कि जब मैं कॉलर ट्यून लगाती थी तो मैं खुद दूसरे फोन से खुद को कॉल किया करती थी देखने के लिए कि हाँ कैसा साउंड कर रहा है। तो ये तो थी मेरी अर्लीस्ट इंटरनेट की मेमोरी। आपकी मेमोरी क्या है मैं जानना चाहूंगी, तो आप मुझे प्लीज कॉल करके बताइए 9722355555 पे।

दोस्तों, अभी अभी विकास गुप्ता जी का कॉल आया और उन्होंने बताया अपने टाइम के इंटरनेट और फोन एरा के बारे में कि उस टाइम ना, क्योंकि इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल्स में बड़ा डिफरेंस रहता था. मतलब अगर आप कॉल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज हुए होते थे पर मिनट बेसिस वगैरह. तो वो इंश्योर करते थे कि अगर वो आउटगोइंग कॉल्स कर रहे हैं तो 60 सेकेंड्स के नीचे ही ख़त्म करना है, क्योंकि इसके ऊपर जो है टॉक टाइम बेस्ड है, पर मिनट बेसिस पे चार्ज हो रहा है, बहुत खर्चा लग सकता था. और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही ट्राई करते थे कि भाई इनकमिंग कॉल्स ही हो, घर से कॉल आए तो इनकमिंग कॉल्स ही हो, हमें नहीं करना पड़े. तो ये सब तो हम बातें कर रहे हैं 90s और 2000s के गोल्डन इंटरनेट एंड फोन एरा की. और उस टाइम का अगर आपको याद है तो साइबर कैफेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी यार. साइबर कैफे वाले जो भैया रहते थे वो हीरो थे हमारे. वो उस टाइम के जनरेशन का को वर्किंग स्पेस जिसको कहते हैं ना आज, वही था समझ लीजिए. क्योंकि वहां जाके हम ईमेल्स चेक करते थे, सॉन्ग्स डाउनलोड करते थे, रिज्यूमे भी प्रिंट करते थे और सीक्रेटली गेम्स भी खेलते थे. और मुझे तो बहुत खतरनाक डिटेल याद है कि 20 रुपीज पर आवर होता था और मैं भैया के पास जाके रोती थी कि भैया 15 रुपए कर दो भैया, मैं तो स्टूडेंट हूँ ना. और भैया मान ही जाते थे एट द एंड बच्चों के लिए. और अगर एग्जाम रिजल्ट जिस दिन चेक करना होता था उस दिन तो मतलब इतनी टेंशन होती थी और वेबसाइट इतना क्रैश होता था, पीसीज इतने स्लो होते थे, बार बार रिफ्रेश कर रहे कि भाई साहब बता दो क्या क्या आया है मार्क्स. अगर आपको भी ऐसा कुछ याद आ रहा है अपने जमाने के शुरुआती दौर के इंटरनेट या फोन एरा के बारे में तो हमें कॉल करके बताइए @972235555 पे.

0: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
1: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
0: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
2: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
5: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Aaja meri gaadi mein baith ja.
0: Baith jao. पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
0: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो।
11: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
10: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
0: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
10: सच में? बिल्कुल घर जैसा।
0: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम। हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
5: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

तो ये था प्रिटी वुमेन, और आपको भी मौका मिल सकता है प्रिटी प्रिटी गिफ्ट्स पाने का फ्रॉम दी स्टोर देसी मंडी। जी हाँ, वक्त आ गया है हमारे गिव अवे राउंड का, और आपको ध्यान से सुनना है मेरा क्वेश्चन और जवाब देना है, कॉल करना है हमें। तो मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ फिर। आज का गिव अवे राउंड का सवाल ये है कि माउंट एवरेस्ट को डिस्कवर होने से पहले, मतलब बिफोर माउंट एवरेस्ट वॉज डिस्कवर्ड, व्हाट वॉज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? माउंट एवरेस्ट को डिस्कवर होने से पहले सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा था? आपको बताना है, आपको कॉल करना है मुझे एट 972-235-5555 पे, और आप जीत सकते हैं देसी मंडी गिफ्ट हैम्पर।

दोस्तों, मैंने आपसे गिव अवे का सवाल किया था कि बिफोर माउंट एवरेस्ट वॉज डिस्कवर्ड वॉट वॉज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आप लोग काफी स्मार्ट हो यार. मतलब आपने जान लिया कि जो जवाब है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है. जी हाँ, द आंसर इज इट इज स्टिल माउंट एवरेस्ट, जस्ट नॉट डिस्कवर्ड. ओके, आई ट्राई टू गिव यू सम ट्रिक क्वेश्चन सो दैट आप चैट जीपीटी वगैरह नहीं कर पाए. मतलब फेयर चांस मिले कि जो ध्यान से सुन रहे हैं उनको जरूर चांस मिलना चाहिए. और इस गिव अवे के विनर हैं श्री राम. कांग्रेचुलेशन श्री राम, आपको मिलता है देसी मंडी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर. आप जाएं और कलेक्ट कर लें. इट्स लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास. और अगर आप देसी मंडी गए हैं तो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. लाइक दे हैव गॉट अ ग्रॉसरी स्टोर एज वेल एज रेस्टोरेंट. मतलब शॉपिंग ओपन करके थक नहीं जाते अपन की हे घंटे से यही कर रहे हैं, फिर खाने का मन करता है. तो all in one place, and Desi Mandi is also one of the largest South Asian grocery store in the town. So ab beshak jaye aur Desi Mandi ka anand uthaye.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
7: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe. Traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard off 635 East in Irving.
8: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scodialcpa.com.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
14: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
13: कैसे?
14: पेज 3 ईटरी?
13: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
14: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
13: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
15: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
16: जी का सवाल यह है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
17: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
16: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
18: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
19: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
20: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park Plano near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
21: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

0: दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मिस्टर दीप फ्रॉम जीनू क्रेडिट. गुड आफ्टरनून दीप.
1: गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स.
0: ओके दीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यू नो क्रेडिट रिपेयर का यूज क्या है एंड हाउ डज जीनू फिट इनटू द पिक्चर ऑल टुगेदर. ओवर टू यू.
1: जी जी डेफिनेटली जी. क्रेडिट स्कोर इज मोर देन जस्ट अ नंबर. तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, इट्स एवरीथिंग. सो इट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू बाय अ होम, फाइनेंस अ कार, स्टार्ट अ बिजनेस और मोर ओवर इवन क्वालिफाई फॉर लोअर इंटरेस्ट रेट्स, राइट. तो सबसे बड़ा जो आजकल बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर अगर आप एक बार आपका जो क्रेडिट खराब हो गया तो योर फ्यूचर इज लिमिटेड. But it, the truth is that with the guidance, discipline and clear plan, financial recovery is possible. So that's where Zainu steps in.
0: Great, Deep. और आप कुछ और Zainu के बारे में बता सकते हैं, like how exactly does it help and आपका contact वगैरह?
1: Right. जी जी जी. देखिए बेसिकली Zainu एक प्रोग्राम डिजाइन करा हुआ है हमने, जो हम उन इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं हु आर स्ट्रगलिंग विद द बैड क्रेडिट. तो ये तो इट्स आई थिंक आपको भी पता होगा कि अगर आपका क्रेडिट बैड है तो आपकी जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं. अगर आपको लोन अप्लाई करने जाते हैं, इफ़ यू हैविंग अ लो क्रेडिट स्कोर, तो आपको वो लोन सेंक्शन नहीं होगा, राइट. तो कई बार क्या होता है आपके क्रेडिट स्कोर हल्के से आज इन अ फेयर कैटेगरी होते हैं तो आपका जो रेट इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हायर हो जाता है. तो इसकी वजह क्या होती है, अभी कभी ना कभी इट्स हैक्टिक लाइफ, हम अपनी पेमेंट्स को पॉप अप नहीं कर पा रहे, मिनिमम पेमेंट्स को हम टाइम पे नहीं पे कर रहे हो, आपकी जो लेट पेमेंट्स हैं, मिस पेमेंट्स जैसे हम जिनको बोलते हैं, वो आपकी रिपोर्ट पे आ जाती है. अगर आपकी रिपोर्ट पे एक लेट पेमेंट रिफ्लेक्ट करती है तो आपके पॉइंट्स कहीं ना कहीं 30-40 पॉइंट्स वो ड्रॉप कर देता है. ऐसी और भी कई चीजें हैं जैसे क्लोज्ड अकाउंट्स हो गए, चार्ज्ड ऑफ कमेंट्स हो गए, इवन कलेक्शन अकाउंट्स, या कोई आपकी इंफॉर्मेशन वो है इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है. कई लोगों को तो यही नहीं पता भी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसका भी अप टू डेट होना आपकी रिपोर्ट पे बहुत जरूरी है. जैसे आपने कभी आप किसी पुराने एड्रेस पे रह रहे हो और आपने नया एड्रेस, आप नए घर पे मूव हो गए, आपका पुराना एड्रेस है, उससे क्या होता है भी आपकी जो कोई आपकी जरूरी दस्तावेज है जैसे कोई लेटर्स है फ्रॉम द बैंक्स और फ्रॉम एनीवेयर, वो आपके पुराने एड्रेस पे जाती रहती हैं. तो यू माइट बी मिसिंग सम मेजर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम देयर. तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, बैड इम्पैक्ट करती हैं, जिससे आपको लोन सेंक्शन नहीं होते. तो Zainu उन लोगों की हेल्प करता है जैसे मैंने पहले बताया जो बैड क्रेडिट को स्ट्रगल कर रहे हैं. तो हमारा टोल फ्री नंबर है, इट्स 800-400-9468. हम अमेरिका की सारी स्टेट्स में काम करते हैं. वी आर नॉट चार्जिंग एनी अपफ्रंट फी. वी आर 100% परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनी. हमारे पास क्रेडिट स्पेशलिस्ट एजेंट्स हैं जो आप कभी भी कॉल करो, आप एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और आपकी क्रेडिट रिपोर्ट आप हमारे एजेंट्स के अंदर डिस्कस करो एंड वी विल लेट यू नो आपकी रिपोर्ट पे क्या क्या होने वाला है एंड वी कैन टेक गारंटी दैट यू विल बी ऑन ट्रैक.
0: थैंक यू सो मच दीप. आई थिंक जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं विद बैड क्रेडिट स्कोर, प्लीज गेट इन टच विद दीप एंड हिज टीम एंड ही हैज मेंशन हिज टोल फ्री नंबर विच इज 800-400-9468. थैंक यू वंस अगेन दीप एंड वील कनेक्ट विथ यू नेक्स्ट टाइम.
1: थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
0: एंड दोस्तों हमारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और भी बातें होती रहेंगी. स्टे ट्यून्ड.

दोस्तों आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल, दोनों ही मतलब इंडिविजुअल्स के लिए भी और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए भी। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड हैं, इफ़िशियंट फर्म है एंड ये आपको तैयार करते हैं फ्यूचर के लिए। तो अगर आपको इनके सर्विसेज में इंटरेस्ट है, आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं एजी फिनटैक्स टीम को एट 4699429888। आई रिपीट द नंबर फॉर यू 4699429888 या फिर आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज agfintax.com। मैं बनी रहूंगी अपने शो के साथ और हम करेंगे ढेर सारी बातें बस एक प्यारे से सॉन्ग के बाद।

दोस्तों, बाहर बारिश जो है लगातार हो रही है, कल भी काफी हुई थी, और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सावधानी बरते, स्लो गाड़ी चलाए ताकि आप किसी एक्सीडेंट वगैरह में ना फंसे। बट फिर भी अगर आप किसी अनफॉर्चुनेटली जो है किसी भी कार या एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट में फंस जाते हैं या फिर किसी स्लिप या फॉल एक्सीडेंट में, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है एट टाइम्स, और अटर्नी ओमर ख्वाजा और उनकी टीम इंश्योर करेंगे कि आपको तब तक पेमेंट की जरूरत नहीं पड़े जब तक कि आप ये केस जीत नहीं जाते, और ये भी इंश्योर करेंगे कि आपको भरपूर और ड्यू कंपनसेशन मिले। तो अगर आपको चाहिए एक फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम अटर्नी ओमर ख्वाजा और उनकी टीम से, तो कॉल कीजिए एट 4693005046। आई रिपीट द नंबर, 4693005046, या फिर आप विजिट कर सकते हैं उनका वेबसाइट जो कि है attorneyomar.com।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
4: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
3: रोज का सेम प्रॉब्लम।
5: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
6: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
7: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
8: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट month. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
11: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
2: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
12: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
2: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
12: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
2: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
12: एग्जैक्टली। अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
2: नंबर बोल जल्दी।
12: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
13: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
9: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? ना, इट्स टाइम टू लेवल अप। इफ यू गॉट टैलेंट, वी गॉट यू। व्हेदर यू सिंग, डांस, रैप, डू स्टैंड अप, प्ले एन इंस्ट्रूमेंट और हैव अ हिडन टैलेंट नोबडी सीज कमिंग, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad. Registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

अ वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट आफ्टरनून शो विच इज आफ्टरनून अड्डा विद मी यानी कि आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल। और आज का थीम है मिड वीक रीसेट। हाँ यार, मतलब वेंसडे और थर्सडे आते आते लगता है ना कि लाइफ ने रैम पूरी कंज्यूम कर ली है। वही ऑफिस मेल्स, असाइनमेंट्स, घर के काम, बिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऊपर से वो क्लासिक सेंटेंस कि अडल्टिंग तो जरूरी है ना, जिसने भी ये बोला था ना उससे तो मिलना है मुझे। आज हम बात करेंगे बर्नआउट की, अडल्टिंग की। तो अगर आप भी इस मिड वीक हसल में थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं ना, तो कोई ना, अभी आप रिलैक्स कर जाओ एकदम। ये एक बहुत ही ज्यादा सेफ कोजी जोन है जहां म्यूजिक भी होगा, रिलेटेबल बातें भी होंगी और कुछ गेम्स एंड गिव अवेज भी हैं दोस्तों मुझे आपको देने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद फनेशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों सच बताओ, बचपन में लगता था ना कि बड़े होके फ्रीडम मिलेगी। अब बड़े होके समझ आ रहा है कि फ्रीडम के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है भाई। मतलब अडल्टिंग का अब जो मतलब रह गया है वो ये है कि ग्रॉसरी लाना है, सब कुछ खुद डिसाइड करना है, और सबसे डेंजरस जो क्वेश्चन है वो ये है कि आज खाने में क्या बनेगा। यकीन मानिए, इस क्वेश्चन ने कितने रिलेशनशिप को जो है हिला दिया है, मालूम है आपको। अगर आप अगर देख रहे हैं ऑप्शंस की, खाने वाने की, अगर आपको टेंशन हो रही है कि क्या बनाना है, किधर जाना है, तो देसी मंडी लेके आए हैं आपके लिए अमेजिंग ऑफर्स। और ये वीक जो है आप फुल्ली कवर्ड है। मतलब अगर आप जा रहे हैं मंडे या वेंसडे को, तो आपको मिलता है बाई वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस। और अगर आप जा रहे हैं ट्यूजडे एंड थर्सडे को, तो भी बाई वन गेट वन ऑफर है ऑन डोसाज एंड चार्ट्स एवरी वीकडे 5 PM to 9 PM। और कोई मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप स्टोर पे चेक कर सकते हैं। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्लेवर और ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स, वो भी पूरे वीक। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि देसी मंडी इज लोकेटेड इन लुइसविल, टेक्सास। और अब आते हैं वापस अपने सेगमेंट पे, जो कि है अडल्टिंग के बारे में, यू नो, बड़े होने के बारे में, कि हाय राम, जब रियलाइज होता है कि अब तो हम बच्चे नहीं रहे, अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ भाई, अब तो मेरा ना ऑफिशियली वक्त आ गया है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लूँ, हैंडल करूँ, और अब मुझे कोई भी बच्चों जैसा ट्रीट नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कॉल करके बताइए 972-235-5555 पे।

0: आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो और हम आपसे मिलेंगे.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
9: Not some or price?
4: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
10: Grand Bazaar is hosting Grand Chandrat Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Event Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50 plus boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids rides, henna artists and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5259. Frisco Hall, located at 121 and Independence Parkway.

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो आफ्टरनून अड्डा विद मी यानी कि आरजे सिमी AKA आरजे देसी गर्ल। आज हम बात कर रहे हैं बर्नआउट्स की, यू नो अडल्टिंग की, और कैसे रीसेट किया जाए, कैसे रिचार्ज किया जाए। तो ये जो बर्नआउट होता है ना, ये काफ़ी साइलेंट होता है। कभी कभी आप फिजिकली टायर्ड नहीं होते, पर मेंटली आपको फील हो रहा होता है कि भाई अब नहीं होगा, और मैसेजेस का रिप्लाई देने का मन नहीं करता, फेवरेट सॉन्ग स्किप हो जाते हैं, और वीकेंड भी कुछ खास रिचार्ज नहीं कर पाता। और पता है, बहुत लोग स्माइल करते हुए भी एग्जॉस्टेड फील करते हैं। हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ चेज कर रहे हैं, बेटर करियर, बेटर फ्यूचर, स्टेबिलिटी, और तब कभी कभी किसी का सिर्फ इतना पूछना, तुम ठीक हो ना, काफ़ी होता है। वैसे आप जो है अगर बर्नआउट फील कर रहे हो तो आपका क्या वे आउट है, मतलब आप कैसे खुद को रिचार्ज करते हो? क्या आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो? अच्छा म्यूज़िक हेल्प करता है आपको, एक अच्छी नींद की ज़रूरत है, कॉफ़ी की ज़रूरत है, या फिर कभी कभी कुछ लोगों के लिए तो कुकिंग भी एक थेरेपी होता है। और मेरे जैसे लोग तो एक बार रोना चाहते हैं यार, एक बार रो के फिर अच्छा फील होता है, फिर हम भूल जाते हैं। तो ये तो था मेरा रिचार्ज करने का तरीका। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका रिचार्ज करने का तरीका क्या है, बताइए ना मुझे 972-235-5555 पे।

तो दोस्तों इसके साथ हम ये सेगमेंट क्लोज कर रहे हैं जहाँ की हमने बातें की एडल्टिंग और यू नो मिडवीक बर्नआउट्स के बारे में, और जबकि हमने इतने सारे प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में बात की तो हम कुछ सोल्यूशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। और दुनिया का हर प्रॉब्लम का एक जो सोल्यूशन है वो है अच्छा खाना, मतलब कंफर्ट फूड। और कंफर्ट फूड का मतलब सिर्फ टेस्ट नहीं होता, उसके साथ मेमोरीज भी अटैच्ड होती हैं, जैसे कि घर का दाल चावल, मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा, आइसक्रीम, बिरयानी या फिर सिर्फ एक कड़क गरम चाय। और ऐसा ही कुछ जादू होता है जब हम अपने कंफर्ट मूवीज़ की तरफ भी रुख करते हैं। और अपनी कंफर्ट मूवी की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो यू नो मुझे तो सारे मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट डायलॉग्स याद है और उसके सीन्स भी याद है, एक्टर और एक्ट्रेस ने क्या कपड़े पहने थे, बैकग्राउंड क्या था, मेरे दिमाग में तो सब कुछ चलता रहता है। और मेरे कुछ पॉपुलर कंफर्ट मूवीज़ हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, थ्री इडियट्स, जब वी मेट, क्वीन एक्सेट्रा। आपके खुद के भी बहुत सारे कंफर्ट मूवीज़ होंगे और अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि आपकी फेवरेट मूवीज़ कौन सी हैं तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पे। और मैं मिलूंगी इस गाने और उस ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं क्योंकि अभी तो गिव अवे राउंड आने वाला है दोस्तों।

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा
7: अरे रिलैक्स सब तुम्हारा ही तो है
6: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा
7: वेट व्हाट
0: यस अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है
8: हाय दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग
0: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स. You need a cool therapy.
9: Therapy? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, cool मतलब cool चा therapy.
9: ये क्या होता?
10: Simple. Chandigarh Bites Express in Allen.
11: Chandigarh Bites Express serving some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites. Straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
12: Calculating route. Rerouting.
0: Are ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
12: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
0: Kyun?
12: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: Achha. तो सीधा वही ले चलो
11: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
12: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
13: या दिस इज शक्ति कपूर एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू मी ऑन द फन एशिया रेडियो

दोस्तों आप सुन रहे हैं आफ्टरनून अड्डा विद मी यानी कि आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल। अब हम घुस चुके हैं अपने गिव अवे राउंड में दोस्तों, और आई नो कि आप सब इस राउंड के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। मैं बता दूं, जीतने वाले को मिलेगा नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट ऑन डाइन इन। ये काफी अच्छा मैक्सिकन रेस्टोरेंट है और आई होप कि आप जीत जाएं इसे। और मैं आपको एक सवाल पूछने वाली हूँ, सवाल के बाद मैं आपको एक नंबर दूंगी, उस नंबर पे आपको कॉल करना है और मुझे आंसर बताना है। रेडी? ठीक है जी। तो सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन नॉर्थ की तरफ से जा रही है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन नॉर्थ की तरफ से जा रही है, तो उसका धुआं, उसका स्मोक जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया है। अगर आपको जवाब पता है तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पे।

हमें हमारा विनर मिल चुका है गाइस, और ये गिव अवे राउंड था जहां मैंने आपसे पूछा था कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो उसका धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा। और कुछ लोगों ने बताया कि साउथ डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन दोस्तों वो सही आंसर नहीं है। आपको मेरे सवाल का जो है बहुत ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि कई बार मेरे क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, तो इसमें कोई धुआं नहीं होता। तो जवाब यही था कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं होता है। और जो सबसे पहले सही जवाब जिन्होंने दिया है वो है श्वेता दत्ता। So congratulations, Shweta. तो श्वेता आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट ऑन डाइन इन। और मैं थोड़ा आपको नियॉन कैक्टस के बारे में बता दूं कि ये जो है ना, यहाँ पे मेक्सिकन फूड काफ़ी अच्छा मिलता है, विथ इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी फ्रेश हैं, जबीहा हलाल ऑप्शंस भी हैं और दूसरे वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं, और ये सब पैक होता है विथ बोल्ड फ्लेवर। और अगर वाइब की बात करें तो वाइब एकदम यंग, कलरफुल, मॉडर्न और फुल ऑफ एनर्जी होती है। अगर आप हैंग आउट ऑप्शन देख रहे हैं, डेट नाइट के लिए देख रहे हैं, फैमिली डिनर के लिए कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, तो आई थिंक नियॉन कैक्टस विल डेफिनेटली बी अ गुड चॉइस फॉर यू। और इसके अलावा यहाँ पे क्यूरेटेड कॉकटेल्स मिलते हैं, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स मिलते हैं, और इनके हैप्पी आवर्स भी हैं गाइज, मंडे टू फ्राइडे। और हर एक दिन इन्होंने कुछ ना कुछ स्पेशल डील डाल देते हैं ऑन सम ऑफ द मेन्यू, तो देर किस बात की है। आपको अगर अच्छा खाने का मन कर रहा है, लंच का टाइम हो रहा है, तो कर लीजिए रुक नियॉन कैक्टस की तरफ।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ माई टाइम इक्विटी के बारे में, विच इज लेड बाई CPA सुधीर पाई, जो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को और उनकी फैमिलीज को स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बनाने में थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड दूसरे और भी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स प्लान। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ का या रिटायरमेंट के लिए, या फिर जस्ट अगर आपको चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट्स है ना ग्रो करता रहे, खुद बूस्ट होता रहे, तो माई टाइम इक्विटी कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि ये जो है प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज सोल्यूशन डिजाइंड अराउंड योर गोल्स। मतलब आपका एंड गोल क्या है, क्या लॉन्ग टर्म में आपका जो है आप देखना चाह रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो बेसिस दैट माई टाइम इक्विटी विल प्लान द इंटायर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर यू। अगर आपको इस पे और अधिक जानकारी चाहिए तो विजिट कर सकते हैं mytimeequity.com या फिर कॉल कीजिए @469-702-1272।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: ब्रेकिंग न्यूज होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नो हिडन फीस नो सरप्राइजेस और हाँ सबसे बड़ी खबर उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज हजारों फैमिलीज का भरोसा विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com इज Powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी। जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: Oh, Haseena Zulfo Wale Jaane Jahan.
9: सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस Call Amreen at 214-909-6601.
2: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
9: Amreen Salon. Style that moves with you.
10: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
11: करना पड़ा. फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
10: पर मैंने अभी चेक किया. हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
11: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
2: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है. क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
12: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

दोस्तों आप सुन रहे हैं आफ्टरनून अड्डा विद मी, यानी कि आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल। मैं होती हूँ आपके साथ 12:30 से लेके 2:30 बजे तक, और हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट में। मैं लाई हूँ एक और गिव अवे, तो दोस्तों जिन लोगों को भी लास्ट टाइम नहीं मिल पाया वो दोबारा ट्राई करें, क्योंकि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। दोस्तों एक दिन आपका नंबर जरूर लगेगा, यकीन मानिए। खेलते रहिए फॉर ऑल द गिव अवेज विद फन एशिया रेडियो। और एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग जीत चुके हैं फन एशिया के रेडियो के गिव अवेज, वो लोग थोड़ा कम पार्टिसिपेट करें, हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए, ठीक है। और मैं आपसे एक डायलॉग बोलने जा रही हूँ और आपको बताना है उस मूवी का नाम। लेकिन वेट, उस मूवी का नाम जो है पूरा बताना है, नॉट लाइक जस्ट अ वन वर्ड। मैं आपको इतना हेल्प कर देती हूँ कि इट्स अ 4 वर्ड का मूवी, ठीक है। तो आप सिर्फ एक एक वर्ड लेके नहीं आ जाना कि नहीं यही मूवी है और गिव अवे दे दो, ठीक है दोस्तों। तो मैं बस अभी बोलने जा रही हूँ आपको क्वेश्चन, और जो डायलॉग है वो है हाउस द जोश। गाइस आपको तो याद ही आ गया होगा, लेकिन पूरी मूवी का नाम बताना है, ठीक है। आपको इस डायलॉग के मूवी का नाम बताना है गाइस। कॉल मी एट 972-235-5555 पे।

दोस्तों, इस सॉन्ग पे जाने से पहले हमने आपसे गिव अवे का क्वेश्चन पूछा था कि ये जो डायलॉग है हाउस द जोश, ये किस मूवी से है, और आपको बताना था इसका पूरा नाम, और जो इसका जवाब है वो है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। और आई लाइक द जोश ऑफ पीपल, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। और हमारे जो विनर हैं इस राउंड के वो हैं पद्मनी जी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पद्मनी जी। आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड, और फन पिज्जा किचन में भर भर के देसी ट्विस्ट है, मतलब यहाँ पे है ना फ्लेवर फायर से मीट करता है, बस ऐसा समझ लीजिए। अगर आप वेजी लवर्स हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए अचारी पनीर पिज्जा, जो कि टैंगी अचार पन से भरा हुआ है, और इसके जो सॉफ्ट पनीर मेल्ट होते हैं स्पाइसी मैजिक में, ओए होए होए होए, मैं क्या ही बताऊँ। और अगर आप मीट लवर हैं देन तंदूरी चिकन पिज्जा इज अ प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स। तो या तो अगर आपको बोल्ड पसंद है या फिर ब्यूटीफुली बैलेंस पसंद है, आपके लिए सारे टाइप के ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं, तो आप जाइए। और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो funpizzakitchen.com पे आप जा सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं उनके मेन्यू के बारे में। एंड आई वुड जस्ट टेल यू कि देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्जा किचन। सो पद्मनी जी, जस्ट गो एंड ग्रैब द ऑफर।

ऑल राइट डैलस लिसन अप, और स्टोर ओनर्स ये खास आपके लिए है। रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस जो है अपना समर किक ऑफ कलेक्शन के साथ वापस आ गए हैं। जी हाँ, मार्क योर कैलेंडर्स फॉर जून 3rd and 4th, 9 AM to 5 PM। और इस साल ना ये और भी बड़ा और भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा वेयर हाउस इनका कन्वर्ट होने वाला है एक ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस में। यू कैन एक्सपेक्ट क्रेजी डील्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड फ्री गिफ्ट्स ऑल द डे लॉन्ग। आप वेंडर से मिलेंगे, बेस्ट सेलर्स डिस्कवर करेंगे और स्टॉकअप भी करेंगे यार, लाइक नेवर बिफोर। आई गिव द एड्रेस टू यू, इट्स रवि इम्पोर्ट वेयर हाउस, 11029 हैरी हाइंस बुलेवर्ड, बिल्डिंग 8, डैलस, टेक्सस। जी हाँ, तो आई जस्ट रिपीट द डेट्स फॉर यू, विच इज जून 3rd and 4th। और एक और जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाहर बारिश वगैरह काफी हो रही है, तो सेफली ड्राइव करें जी, क्योंकि यू नो बहुत चांसेस हैं ऐसे मौसम में एक्सीडेंट्स वगैरह होने के। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, लाइक कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लिप और फॉल इंसिडेंट, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा आपकी हेल्प कर सकते हैं टू फाइट योर केस, एंड ही विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। आई मीन इंश्योरेंस कंपनी से डील करना कई बार कई दफे काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है, और आपको जरूरत पड़ती है एक अटर्नी की जो कि इंश्योर करे कि आप जीतें और आपको कॉम्पनसेशन मिले। एंड यू ऑल्सो डू नॉट हैव टू पे अंटिल यू विन। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री कंसल्टेशन विथ ओमर ख्वाजा टीम, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं एट 4693005046, या फिर विजिट करें attorneyomer.com। और दिस सेगमेंट वॉज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा विद हिज ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, मैं आपको एक प्यारे से सॉन्ग के साथ छोड़ती हूँ। कल मिलूंगी 12:30 बजे और नए नए कंटेंट लेके, नया नया कुछ ड्रामा लेके, मसाला लेके। ठीक है जी, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेफ ड्राइव कीजिए एंड हैव अ गुड डे।

0: समझ रहे हो कि जगह सही नहीं है अर्जुन.
1: All right, जी कुछ releases of 2026, Bollywood releases of 2026 का सेगमेंट आपके लिए लेकर आई हूँ और कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में जिक्र कर रहे हैं. एक मूवी जो कि सबसे ज्यादा जिसने इस साल अभी तक, अब मई 20th हो गई है और इस साल का मैक्सिमम बिजनेस किया है, वो है धुरंधर द रिवेंज. अच्छा, नंबर्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. 1800 करोड़, यानी कि 1847 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बिजनेस अब तक धुरंधर दी रिवेंज यानी कि धुरंधर 2 कर चुकी है. रिलीज हुई थी ये मूवी आपके लिए जी, देखिए मैं आपको डेट बताऊं कब रिलीज हुई थी. 19th मार्च को. सो 19th मार्च, अप्रैल, मई, दो महीने में अराउंड 1800 करोड़ का बिजनेस हो चुका है और अब आगे क्या होगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा. रन टाइम 229 minutes, directed by Aditya Dhar, released on 19th March 2026. This is Ari from Dhurandhar.

RIG Border 2 release hui 23rd January 2026 ko. Sunny Deol, Varun Dhawan, Diljit Dosanj, Ahan Shetty, Mona Singh, Sonam Bajwa, ek bahut hi khoobsurat star cast, Anurag Singh ne is film ko kiya direct. Aur aapko bataen ji ke ab tak ye movie jo hai wo around 464 crores ka business worldwide कर चुकी है और इसी के साथ जो तीसरे नंबर पे टॉप फिल्म है वो है भूत बंगला जिसका गाना हमने अभी प्ले किया था और वी टॉक्ड अबाउट इट फिर एक और मूवी रिलीज हुई एंड दैट वाज राजा शिवाजी इसके अंदर हमें नजर आए रितेश देशमुख संजय दत्त अभिषेक बच्चन विद्या बालन एक स्टार स्टडेड मूवी है और रितेश देशमुख ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ये थी इस फिल्म की खास बात तो एक छोटे से उसके जो राजा शिवाजी का एंथम था इस मूवी में उसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे दिस इज राजा शिवाजी

R&G My Time Equity, led by Sudhir Pai, helps individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities, as well as alternative investments. तो चाहे आप प्लान कर रहे हो लॉन्ग टर्म वेल्थ, या फिर आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट, टू बिल्ड अ नाइस पोर्टफोलियो, हर चीज़ के लिए माई टाइम इक्विटी विल बी एबल टू हेल्प यू. तो पर्सनलाइज सोल्यूशन आपके लिए डिजाइन करेंगे वो, एंड दे विल हेल्प यू एंड गाइड यू स्टेप बाई स्टेप. सो ऑल यू हैव टू डू इज log on to their website, read more about them, that is mytimeequity.com, या फिर आप उनको कॉल कर सकते हैं, which is 469-702-1272. 469-702-1272 is that number. एक और मूवी जो कि ये जो आप राजा शिवाजी से गाना सुन रहे थे, ये रिलीज़ हुई थी मूवी. देखिए मैं आपको बताऊं, व्हेन वाज इट रिलीज्ड? इट गॉट रिलीज्ड ऑन 1 May 2026. सो अभी ही रिलीज़ हुई है और अब तक जो है वो अराउंड 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी है. एक और मूवी जो कि रिलीज़ हुई और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, पसंद किया लोगों ने, दैट इज़ ओ रोमियो. ओ रोमियो का ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आकर बताती हूँ आपको कि कब रिलीज़ हुई और अब तक इतना बिजनेस कर चुकी है.

0: All right, जी, कुछ फिल्में जो कि 2026 में रिलीज हुई, आप सुन रहे थे 2026 का बॉलीवुड. आप जानते हैं कि मैं हर थर्सडे को लेकर आती हूं आपके लिए 90s का बॉलीवुड, और अब से वेंसडे को 2:30 बजे से 3 बजे तक लेके आऊंगी 2026 का बॉलीवुड. क्या चल रहा है, कौन सी मूवियां रिलीज हुई, क्या क्या बिजनेस किया, सब कुछ आपको बताऊंगी. अब हम इस सेगमेंट के इख्तिताम पे आ गए हैं जी, और अब ब्रेक की तरफ आपको लेके जा रही हूं. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वी विल बी एंटरिंग इनटू आवर पॉप फ्रीक्वेंसी सेगमेंट, where we will play some Pakistani pop music. 3 baje se 3:30 baje tak, that will be on, aur phir 3:30 se 4 tak aapke liye lekar aungi the top 10 trending dramas of Pakistan. TRPs ke lihaz se kaun se dramas hain jo aapko miss bilkul nahi karne chahiye, aur audience jo hai, they are loving it. They are getting millions of views on YouTube and they are available for your viewing pleasure. Lekin us sab ke liye aapko bana rehna padega 104.9 FM. Channel change mat kijiye. Stay tuned.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: Heere moti main na chahun.
5: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo, kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free, aur wo bhi sab kuch wholesale price. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to kar na hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hain. Level 1, mixed veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla, thora nostalgia, thora comfort. Level 3, amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow-cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
10: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
11: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care. Precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
12: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 9843464611 और विजिट masterjoshiram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
14: सब कुछ साफ रख सकते हो पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
15: क्योंकि ये कौन बोला?
14: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
16: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
17: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
18: Arre yaar, Dallas mein Punjab?
19: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
20: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
21: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
22: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. Fun Asia Radio.

और अजी, अगर आप ज्वेलरी खरीदने के मूड में हैं, लेना चाहते हैं किसी के लिए या अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो श्री कृष्णा ज्वेलर्स इज द प्लेस वेयर यू नीड टू गो. द हेयर ज्वेलरी इज नॉट जस्ट एन एक्सेसरी. ये है जी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस, टाइमलेस ब्यूटी, लव, केयर, एनीथिंग दैट आप ज्वेलरी से एसोसिएट करते हैं. गोल्ड क्लासिक्स हैं इनके पास, डिजाइन, स्पार्कलिंग डायमंड्स, कुंदन के बेहतरीन सेट्स, स्टनिंग पोल्ट्री कलेक्शन, पोल्की कलेक्शन. और मुझे पोल्की और कुंदन के जो सेट हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं. दे आर वेरी एलिगेंट एंड दे आर वेरी रॉयल. दैट्स व्हाट द लुक दैट दे गिव. हर तरह की ज्वेलरी इनके पास मौजूद है. हर पीस जो है वो स्पेशली आपके स्पेशल मोमेंट्स के लिए क्राफ्ट किया जाता है. दे हैव बीन डूइंग दिस सिंस 1967. सो डू विजिट देम. उनकी नई लोकेशन इज ऑपरेटिंग नाउ इन फ्रिस्को. दैट इज एट 13145 स्वीट 220 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को 75035 उनका एड्रेस है. दिस इज श्री कृष्णा ज्वेलर्स. विजिट देम, चेक आउट व्हाट दे हैव टू ऑफर. यू विल डेफिनेटली लव इट.

0: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
8: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
7: K2 ड्राइव मतलब
8: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
7: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
8: 100%
5: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। केटो ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरोइन हूं।
13: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
14: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
13: रोज का सेम प्रॉब्लम।
9: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
15: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
9: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
16: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
17: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
18: Calculating route. Rerouting.
17: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
18: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
17: क्यों?
18: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
17: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
16: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
18: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
19: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts facts and circumstances. Call 214-378-8880. Matro Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
20: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
21: कितने आदमी थे
22: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है

आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण, मैं हूं किरण आपके साथ। और बिफोर दिस कि मैं बिगिन करूं आपके लिए टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ लास्ट वीक की, वो कहती है ना ब्रेक डाउन, एक आपको जबरदस्त खबर बतानी है। कैफी खलील के हर गाने का इंतजार हम करते हैं। कैफी खलील जी हाँ, कहानी सुनो, जबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था वाले कैफी खलील, उनका नया गाना अभी रिलीज हुआ है। देखिए अराउंड 4 दिन पहले या 3 दिन पहले कुछ इसी तरह रिलीज हुआ है, और वो गाना मैंने 5 दिन पहले और वो मैंने आपके लिए सेव कर रखा था कि आपके लिए प्ले करेंगे राइट हियर ऑन 104.9 एफएम। दिस इज द न्यू सॉन्ग दैट हैज जस्ट ड्रॉप्ड 5 days ago बाय कैफी खलील एंड इट इज ऑलरेडी गार्नर्ड 1.7 मिलियन व्यूज। दिस इज मुंतजर। मुंतजर का मतलब होता है जी इंतजार करने वाला, यानी कि मैं इंतजार कर रही हूं, तो इसका मतलब है मैं मुंतजर हूं।

All right, going back to the top trending 10 trending dramas of Pakistan. Chhate number pe jis drama ne is hafte apni jagah banayi, that is the drama serial Rehmat. Ye bhi ek daily evening serial hai jo ki ARY Digital aur ARY Plus pe aata hai. It tells an emotional story centering on three sisters and the challenges jo ki traditional aapke societal prejudices ki wajah se un ladkiyon ko face karne ko milte hain. So kafi pasand kiya ja raha hai. Junaid Khan actually कुछ clips काफी viral हुए हैं इसके, जुनैद खान और हिना तारिक के दरमियान उनकी chemistry को बहुत पसंद किया जा रहा है. शहूद अलवी हैं इस drama के अंदर. और इसी के साथ पांचवें number पे जो drama रहा, that is हमराही. हमराही जो है वो constantly पिछले कई हफ्तों से top 5 में अपनी जगह बनाए हुए है. कभी दूसरे पे आ जाता है, कभी चौथे पे, कभी पांचवें पे. This drama airs on Jio Entertainment, हरपल जियो. और it follows the intense emotional journey of सेहान, जो इस साथ जो drama रहा चौथे नंबर पे जिसने ट्रेंड किया इस हफ्ते द टॉप 4 ड्रामास में, दैट इज द ड्रामा सीरियल महानूर. एक इमोशनल स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु इज ब्रॉट अप इन काइंड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एरिया और वो सीख रही है लर्निंग एंड डांसिंग एंड हाउ थिंग्स रिवॉल्व अराउंड हर, दैट इज द स्टोरी ऑफ द ड्रामा. खदीजा सलीम ने महानूर का किरदार अदा किया है. हुमायूं अशरफ और जोया नासिर इस ड्रामे में, रुबीना अशरफ भी हैं इस ड्रामे में. सो दिस इज द टॉप ट्रेंडिंग 4, 5, and 6 ड्रामास. सो चौथे नंबर इस ड्रामे की बात हो रही है महानूर की, तो चलिए फिर महानूर का ऑफिशियल साउंड ट्रैक आपको सुनाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी द टॉप 3 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ लास्ट वीक दैट यू रियली रियली कैन नॉट मिस.

And it is time now to tell you the top three trending dramas of last week. Teesre number pe jo drama raha, that is Shaidai. Kai hafton se isne top three mein apni jagah banayi hui hai. Firoz Khan aur Sahar Hashmi hame is drama mein nazar aa rahe hain. Shaidai revolves around Firoz Khan's character Ali Khan, a relentless driven man accustomed to getting what he wants. Aur unki life completely transform ho jati hai when he finds unexpected love in his life. Aur ye drama Jio Entertainment पे आ रहा है जी, वेंसडेज एंड थर्सडेज 8 PM. जरूर देखना शुरू कीजिए इफ यू हैवंट, इज अ ब्रिलियंट स्टोरी. और इसी के साथ जो सेकंड नंबर पे ड्रामा ट्रेंड किया आज कल, बहुत मजे मजे से सीढ़ियां चढ़ रहा है नंबर्स की और अब नंबर टू पे आ गया है. बहुत जल्द मुझे ये नंबर वन पे खड़ा हुआ दिख रहा है ड्रामा, एंड दिस इज बस तेरा साथ हो. फरहान सईद और सना जावेद इस ड्रामे में हमें नजर आ रहे हैं. इट इज अ स्टोरी ऑफ फरहान जिन्होंने अनस का किरदार किया है और वो अपने यू नो अंकल के घर में रहते हैं, डजंट हैव पेरेंट्स, और किस तरह से उनको वहाँ पे टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ा है. एंड देन सना जावेद हु लिव्स विद अ ब्रदर, एंड देन व्हाट इज हर लाइफ स्टोरी, एंड बोथ ऑफ देम आर प्रीटी मच गोइंग थ्रू द सेम ट्रॉमा और सेम प्रॉब्लम्स, एंड देन हाउ दे कनेक्ट इज द स्टोरी ऑफ बस तेरा साथ हो. सेकेंड नंबर पे एयरिंग ऑन देखिए ARY डिजिटल, और मंडे ट्यूजडे 8 PM ये ड्रामा एयर होता है. और नंबर वन पे जो ड्रामा रहा हर बार की तरह कई हफ्तों से नंबर वन पे इसने अपनी जगह बनाई हुई है, दिस इज डॉक्टर बहु, विच एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन प्रोफेशनल करियर एज वेल एज एंड ट्रेडिशनल डोमेस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो एक औरत से रखी जाती हैं. इसमें कुबरा खान जो है डॉक्टर फजर का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि ऑफकोर्स डॉक्टर बहु हैं, और शुजा असद द मेल लीड हैं, द यंगेस्ट सन ऑफ द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. और किस तरह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जॉब और करियर और डोमेस्टिक लाइफ को लेकर. दैट इज द स्टोरी एयरिंग ऑन ARY डिजिटल फ्राइडे and Saturday 8 PM. So if you haven't started watching these, at least the top three dramas, so zarur dekhna shuru kijiye. You're going to enjoy, have a lot of fun. Agle hafte ek bar phir 3:30 se 4 baje tak leke aungi aapke liye the top 10 trending dramas of last week for Pakistan. Aur baat ho rahi hai Bas Tera Saath Ho ki, so we're going to wrap up this segment with this official soundtrack of Bas Tera Saath Ho.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
7: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
8: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
10: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
11: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
10: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
11: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
12: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
13: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
14: Safari khoobsurat hai manzil se bhi.
15: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
16: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जा रहा हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
17: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panchtara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
18: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
19: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Aap sunte hain mujhe 2:30 baje se 5 baje tak, 2:30 PM till 5 PM. I am here with you every day, Monday to Friday. Aur aaj jo hai, I am going to have an extended 1.5 hour with you. We'll be here till 6:30 PM playing some absolutely brilliant music for you. Gana aur music jo hai, wo to ji yahan Fun Asia ka khasa hai. Aur aapke saath baatein aur gappe bhi chalti rehti hain. And we are now entering into our conversation corner that is brought to you by Flavor Lounge with Sunehri Kiran. Ye time hai aapke paas to jeetne ka dal makhni as ya phir dhaba style chicken curry, veg ya non-veg, dono options hain. This is a dine-in only offer. To agar aap jeet gaye to aapko Flavor Lounge in Frisco mein jaake dine-in karna hoga, located on Preston Road. तो अगर आप पिछले एक महीने में ये गिव अवे जीत चुके हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए. यू कैन ओनली बी अ विनर वंस. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कॉन्वर्सेशन कॉर्न में हिस्सा ना लीजिए. दिस इज दैट टाइम ऑफ द डे व्हेन वी कनेक्ट, टॉक अबाउट मूवीज, टॉक अबाउट सॉन्ग्स, टॉक अबाउट सम मजे मजे की बातें. तो जी अब जो है आज के कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में बात करते हैं कुछ आइकॉनिक बॉलीवुड के डायलॉग्स की. तो बताइए कि कौन सा ऐसा बॉलीवुड का डायलॉग है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद. या वो कहती है ना कि वो जहन में, जैसे ही मैंने आइकॉनिक बॉलीवुड डायलॉग बोला, आपके जहन में कौन सा डायलॉग आया? मेरे जहन में आया मगैम्बो खुश हुआ. लेकिन और ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक्सटेम्पो टाइप का ये था और एकदम से ये डायलॉग आया मेरे जहन में. आपके जहन में कौन सा आया? 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय फ्लेवर लाउंज. फोन उठाइए, कॉल मिलाइए और बताइए विच डायलॉग you're thinking about. Fun Asia Radio, you are live here.
1: Hi, Flavor Lounge.
0: Radio की आवाज कम कर दें ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं. बताइए अपना नाम.
2: जी मेरा नाम सोनल है.
0: जी
2: और मेरे जी मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे.
0: ओ वाह क्या बात है. That is lovely, Sonal. कुछ कुछ ठीक है जी Sonal. That is अच्छा. So is this one of your favorite movies as well?
2: Yes, correct.
0: Okay, awesome.
2: I love this movie.
0: Brilliant. सोनल सुनते रहिए. मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. Fun Asia Radio, you're live on air. अपना नाम बताइए.
3: Hi, my name is Rizwana.
0: जी रिजवाना, what dialogue are you thinking about?
3: या शो लेकर जो कितने आदमी थे, like कितने आदमी थे ये वाला.
0: कितने आदमी थे? सरकार दो.
3: सरकार दो. यस ये वाला.
0: बिल्कुल सही रिजवाना, शोले का कितने आदमी थे. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. सुनते रहिए, मैं भी विनर अनाउंस करती हूँ. Fun Asia Radio, अपना नाम बताइए. Fun Asia Radio, what's your name?
4: Hi, this is Shivani.
0: Hi Shivani, बताइए what are you thinking?
4: So my all-time favorite movie is Tum Bin, the original one. Mm-hmm. And there is one dialogue in it where the hero says, "Janta hu aapko sahare ki zarurat nahi hai, main sirf saath dene aaya hu."
0: Wah.
4: So it was very touching.
0: That is amazing. That is amazing. Movie bhi itni touching thi aur it was one of the very popular movies. Thank you so much, yeah. Shivani. Thank you for your call. Sunte rahiye, main bhi announce karti hu. Fun Asia Radio, you are live in air. What is your name?
5: Hello.
0: Hi, what is your name?
5: Rosina.
0: जी बताइए, is it yeah, जी Rosina, what are you thinking?
5: I'm thinking the dialogue from like मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है.
0: वाह वाह बिल्कुल सही है. अमेजिंग आपने डायलॉग हमें याद दिलाया. ये मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ ये दीवार फिल्म से था या किस फिल्म से था? दीवार से.
5: जी
0: ओके परफेक्ट परफेक्ट रोजीना, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. ऑलराइट जी, एक और कॉल लेंगे, उसके बाद गाने की तरफ जाएंगे और वापस आके फिर थोड़े से जो है आपके ओपिनियंस लेंगे. Fun Asia Radio, you're live on air, what is your name?
6: माधव.
0: जी माधव बताइए, what are you thinking?
6: रिश्ते में तो मैं तेरा बाप लगता हूँ, नाम नहीं सहनसा.
0: बिल्कुल सही जी, मेरा ख्याल है इस डायलॉग को कौन भूल सकता है. ओवरनाइट सेंसेशन था ये डायलॉग. जी बिल्कुल. थैंक यू माधव, सुनते रहिए, मैं अभी अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस. Fun Asia Radio, यू लाइव इन एयर, व्हाट इज योर नेम?
7: जी ताहिर अली, कुलभूषण करवंडा, मूवी का नाम था शान,
1: और मैं अपने दोस्तों को तंग करता था, अजीब जानवर है ये.
0: ठीक है जी, अजीब जानवर है, बिल्कुल सही, फ्रॉम द मूवी शान. ओके ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का. सुनते रहिए, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
8: हाय, दिस इज रुचि.
0: हाय रुचि, बताइए व्हिच डायलॉग आर यू थिंकिंग?
8: डीडीएल जी, ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
0: ये बात आपने बड़ा सही डायलॉग याद दिलाया, जहन से निकला हुआ था, डीडीएल जी. थैंक यू सो मच रुचि, सुनते रहिए. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट.

0: कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण अभी जारी है. बताइए फनीशर रेडियो, आप ऑन एयर हैं, क्या नाम है आपका?
1: दिव्यस. यस.
0: ऑल राइट दिव्यस, बताइए व्हाट डायलॉग आर यू थिंकिंग राइट नाउ?
1: गायल मूवी का सनी देओल का एक आत्या.
0: जी, दैट्स इट.
1: कातिया समथिंग यार, 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा तो उठेगा नहीं, उठ जाएगा.
0: अच्छा, ये जो 2.5 किलो का हाथ है ये तो दामिनी का डायलॉग है. जी
1: नहीं,
0: जी
1: वो कातिया का भी है, गायल का है ना, गायल का वो है ना.
0: बिल्कुल सही कातिया, आपने सही कहा. थैंक यू सो मच दिव्यस, थैंक यू फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
2: Sorry, I don't want to be on live on air. Sorry, Kiran, I'm going to hang up.
0: Okay, no problem. Fanisha Radio, you are live on air. What is your name?
3: डॉन को पकड़ना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.
0: बिल्कुल सही, अपना नाम बताइए.
3: हिमांशु, लास्ट नेम पटेल.
0: ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर कॉल. अब जी सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. ऑलराइट जी, दैट वाज फनी कॉन्वर्सेशन कॉर्नर ब्रॉट टू यू बाय द फ्लेवर लाउंज विद सुनहरी किरण. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव इन एयर, व्हाट इज योर नेम?
4: हाय, दिस इज विशाली.
0: हाय विशाली, बताइए व्हाट डायलॉग आर यू थिंकिंग?
4: I am thinking, actually, this was one of my dad's favorite dialogue is from Sharabi. Amitabh Bachchan, मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो.
0: बिल्कुल सही, absolutely. Thank you, Vishali, for reminding us of that beautiful dialogue. सुनते रहिए, I'm going to announce the winner in a bit. Thank you. Fanisha Radio, you are live here. What is your name?
5: Yes, ma'am. My name is Yasmin Banu.
0: जी यास्मीन, what are you thinking?
5: I'm thinking that Om Shanti Om, एक चुटकी सिंदूर तुम क्या जानो.
0: एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो.
5: रमेश
0: बाबू,
5: यस
0: बिल्कुल सही, जबरदस्त डायलॉग आपने याद दिलाया. थैंक यू यास्मीन, सुनते रहिए. आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
6: माय नेम इज टीना एंड मैं जो डायलॉग सुना रही हूँ दबंग मूवी का सुना रही हूँ कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता पर प्यार से डर लगता है.
0: प्यार से लगता है, अमेजिंग आइकॉनिक डायलॉग था और बड़ा सही डायलॉग था कि थप्पड़ मार लो प्यार ना करो उससे डर लग रहा है.
6: या सही बात है.
0: ठीक है, थैंक यू टीना, थैंक यू, सुनते रहिए. आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव इन एयर, व्हाट इज योर नेम?
7: जय.
0: जी जय, बताइए व्हाट आर यू थिंकिंग?
7: डायलॉग फ्रॉम वक्त जाने.
0: जी,
7: शीशे के घर वाले कभी दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते, समझे?
0: बिल्कुल सही जी, एब्सोल्युटली. राज कुमार साहब का बोला हुआ ये जबरदस्त डायलॉग आपने हमारे लिए रिक्रिएट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट. सुनते रहिए फाइनेंशियल रेडियो, योर लाइव इन एयर, व्हाट इज योर नेम? फाइनेंशियल रेडियो, लास्ट कॉलर हैं जी हमारे डे के, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
8: जल्पा.
0: ऑलराइट जल्पा, बताइए व्हाट डायलॉग आर यू थिंकिंग अबाउट?
8: दीवार का जो फेमस डायलॉग है अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर जी का, मेरे पास माँ है तुम्हारे पास क्या है.
0: जी जी जी, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है?
8: तुम्हारे
0: मेरे पास माँ है. बिल्कुल सही जल्पा, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. ऑलराइट जी, विद दैट दिस इज द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. मैं गाने की तरफ जा रही हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैथ के फॉर्मूले में आपके नाम डलने वाले हैं नंबर्स के साथ और जो भी विनर होंगे मैं अनाउंस करूंगी. आपको मुझे कॉल बैक करना होगा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ. सुनते रहिए, बने रहिए, यू माइट जस्ट बी द लकी विनर.

और जी फ्लेवर लाउंज की तरफ से ये कॉन्वर्सेशन कॉर्नर आपके लिए आया था और आपके पास मौका था जीतने का आइदर दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी डाइन इन ओनली. और आप तमाम लोगों की फ़ोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. ब्रिलियंट डायलॉग्स आपने हमें याद दिलाए और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ विनर आपकी लकी डिसाइड करती है. आई हैव अ मैथ फॉर्मूला जिसमें आपकी जिस नंबर में आपकी सीक्वेंस में कॉल आती है वो नंबर मैं डालती हूँ एंड देन वी कैलकुलेट हु इज़ द विनर. और जो हमारे लकी विनर हैं आज के वो हैं ताहिर अली. ताहिर अली साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल बैक सो दैट आई कैन गेट योर फोन नंबर फ्रॉम यू एंड अलॉन्ग विद दैट आपके पास दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर वहां पहुंचाने के लिए एंड देन यू विल हैव 5 to 6 days टू गो टू फ्लेवर लाउंज डाइन इन ओनली एंड अवेल योर ढाबा स्टाइल चिकन करी या फिर मखनी दाल मखनी लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. अगर आप लोग अब तक फ्लेवर लाउंज नहीं गए तो जरूर विजिट कीजिए जी. यू आर गोइंग टू डेफिनेटली एंजॉय फ्लेवर लाउंज. So with that we are moving on. इस गाने के साथ बढ़ रहे हैं आगे. ये सुन रहे हैं आप ट्रॉफी ट्रैक्स विद सुनहरी किरण.

अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं अनफॉर्चुनेटली, या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो दिस सिचुएशन कैन बी ऑफकोर्स एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, आपको इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी डील करना है, लीगैलिटी, पेपर वर्क, द निटिग्रिटीज ऑफ ऑल दैट सिचुएशन इज रियली नॉट समथिंग दैट यू वॉन्ट टू स्पेंड योर टाइम एंड एफर्ट्स एंड एनर्जी ऑन. यू नीड एन अटर्नी बाय योर साइड जो आपके लिए ये सारे काम करें, एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. Not only will they help you fight your case, but they will get you the best compensation that you deserve. And the best part is that you don't have to pay anything until you win. So, agar aap is situation se guzar rahe hain or someone you know is going through such a situation, the best thing that you can do is give them attorney Umar Khwaja's number. Give them a call. 469-300-5046. 469-300-5046 is that number. Ya phir aap unki website visit kijiye. That website is attorneyomar.com, which is OMAR. attorneyomar.com. Aur ji, bahut sari information inki website. Site pe available hai, do check them out.

0: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
1: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8683464611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए.
2: Astrology readings for guidance only and results may vary.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
5: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
4: K2 ड्राइव मतलब
5: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
4: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
5: 100%
6: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402. K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर.
7: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
10: चिकन बनाना.
11: चिकन बनाना?
12: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
9: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
12: Yaar, business chalana din ba din mehenga hota ja raha hai. Har taraf bas expenses hi expenses.
13: Bilkul, lekin tujhe pata hai, ab wahi expenses tujhe income bhi de sakte hain.
12: Sach mein? Expenses se income? कैसे?
13: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
12: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे.
13: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
12: नंबर बोल जल्दी.
13: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
14: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
15: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
16: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
17: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

0: depending on what kind of paperwork we need, whether you're self-employed, salaried employed. Same thing, agar aap apni commercial property, if you're trying to buy it, develop it, and then build on that, Spring Home can help you throughout the process, again, from acquiring the land, developing the land, and then building on that land. So anything to do with real estate, Dream Home can definitely help you.
1: तो हसन जी थोड़ा सा ये भी बताइए कि आजकल क्या मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं. इज इट अ बायर्स मार्केट, अ सेलर्स मार्केट? व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट? व्हाट्स योर ओपिनियन?
0: डेफिनेटली 100% इट इज स्टिल अ बायर्स मार्केट. हम देख रहे कि लास्ट एक हफ्ते से रेट बढ़ना शुरू हुए थे. आज पहला दिन है जहां रेट्स थोड़े 10 ईयर यील्ड कम हुए हैं. सो दैट्स डेफिनेटली गुड न्यूज. तो हम अभी फिलहाल, अगर आप फर्स्ट टाइम हो बायर हो और अभी भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बिल्डर्स एंड बायर्स, बिल्डर्स एंड सेलर्स आर वेरी वेरी मोटिवेटेड. सो दिस इज द टाइम, लाइक हम बोले ना, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट. सो दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक. आई विल अगेन एनकरेज स्पेशली द फर्स्ट टाइम बायर्स, टेक एडवांटेज ऑफ दिस करंट सिचुएशन. डू नॉट वेट फॉर द इंटरेस्ट रेट्स टू ड्रॉप. वंस द रेट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, usually the house prices starts going up. That has always been the trend. So you can always lock in your purchase price, but you can always refinance and lower your interest rate. So a lot of people are like, yaar itna high interest rate hai, I don't want to buy the house right now, bahut rate high hai, hum wait karenge. But jab interest rate gharege tab tak ghar ke bhav badh jayega. So agar abhi prices low hai aur interest rate high hai, buy it even if the interest rates are high, but you're paying a lower price for the home. You can refinance and lower your interest rate. But once the house prices start going up, you cannot, at that particular time, if it becomes a seller's market, you will not be able to lower your house price. So that's why I always say, when you're a first-time home buyer, time the market when it is buyer's market, not when the interest rates are low. Very, very important.
1: परफेक्ट. हुसैन जी, कोई और ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं आज?
0: दो चीज मुझे कवर करना है. एक तो कैश आउट लोन्स, जो भी लिस्टनर्स है अगर वो होम ओनर्स है, इफ देयर होम ओनर्स, अगर वो एक कैश क्रंच में है, स्पेशली अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स हो, आपके क्रेडिट कार्ड हाई डेट से, बट लेकिन आपके टैक्स रिटर्न जस्टिफाई नहीं कर रहे, बट आपके पास घर है जिसमें आपके पास 2-3 लाख की इक्विटी है, आपको वो पैसे निकालना है. We have great programs for self-employed borrowers, जहाँ आप आपके tax returns को totally disregard करते हैं, and then we can get you cash out on your primary residence, and even if you are an investor, we can get you a cash out. अगर आप retired हो, आपके पास investment property है, या आपके पास कोई job नहीं है, आपके पास investment properties है, you have multiple investment properties, and your tax returns are showing losses, और आपको cash out करवाना है. At Dream Home, we have different kind of programs for different borrowers.
1: All right. And what is the best way to get in touch with you?
0: Always, always the best way is email us at info@dreamhomemortgage.com. That's info@dreamhomemortgage.com. Consultation is absolutely, absolutely free. If they want to call me, they can call me at 972-245-5626. That's 972-245-5626.
1: There you go. info@dreamhomemortgage.com. Drop them an email, give them a call, 972-245-5626. Visit their website, dreamhomemortgage.com. Thank you so much for connecting with us this afternoon, Hussain Ji.
0: Always, always a pleasure. Thank you, Karen.
1: You have a good one.

ऑलराइट जी, और इसी के साथ आपके लिए एक और गिव अवे, और गिव अवे आया है इंडिया बाजार की तरफ से, लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ. जानते हैं आप इंडिया बाजार की बहुत सारी लोकेशंस हैं, बट दिस वन इज फ्रॉम फोर्ट वर्थ. यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग अ ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ. इंडिया बाजार इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज. फ्रेश प्रोड्यूस आपको चाहिए हो, स्पाइसेस चाहिए हो, स्नैक्स चाहिए हो, डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए हो, तमाम देसी एसेंशियल्स इंडिया बाजार पे मिल जाएंगे. एंड द एड्रेस ऑफ दिस न्यू लोकेशन और दिस लोकेशन एट फोर्ट वर्थ इज 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ. वंस अगेन, दैट लोकेशन इज 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है. अगर आप फोर्ट वर्थ में रहते हैं, केलो में रहते हैं, हर्स्ट में रहते हैं, हैजलेट में रहते हैं, तो दिस इज द लोकेशन फॉर यू टू गो. और अब जो गाना, सिंपल सा सवाल अब आपसे करने वाली हूँ जी, जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, ये आपको मुझे बताना है कि कौन सी मूवी से मैं प्ले कर रही हूँ और इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया था, बिकॉज ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज है. इसीलिए आप मुझे बताइए. आई एक्चुअली स्टार्टेड फॉलोइंग दिस डायरेक्टर्स वर्क आफ्टर दिस मूवी. तो आप मुझे बताइए कि इस मूवी का नाम क्या है और किस डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, और जीत लीजिए ये चांस ऑफ विनिंग अ स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ दैट यू विल हैव टू गो एंड कलेक्ट योर सेल्फ. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. और गाना है ये.

जी हाँ जी, कहने को जश्ने बहारा है और ये गाना लिया गया था मूवी द वेरी पॉपुलर जोधा अकबर, जिसे डायरेक्ट किया था आशुतोष गवारिकर ने. और यही आपका सवाल था. 15 फरवरी 2008 ये मूवी रिलीज हुई थी. मुझे आज भी याद है वो दिन जब ये मूवी रिलीज हुई थी, बिकॉज आई वेंट टू द थिएटर टू वॉच दिस मूवी. डिडंट वांट टू मिस ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय. देयर केमिस्ट्री इज समथिंग दैट आई हैव लव्ड एज द मेन लीड. और खूबसूरत फिल्म जो कि बहुत ही कमाल की डायरेक्ट की आशुतोष गवारिकर ने. आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. इंद्रप्रीत, सोनम, कुलदीप, अजहर, शीरी, अली एंड सो मच मोर. अभी भी कॉल्स आ रही हैं. गाना खत्म हो गया है, कॉन्टेस्ट का टाइम भी खत्म हो गया. तो आपको लकी विनर बताते चलें जी. आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं अजहर गाढ़िया. अजहर, कंग्रेचुलेशंस. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव 5 to 6 days टू गो टू इंडिया बाजार एंड कलेक्ट योर स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर. और इट विल बी आइडियल अगर आप दो दिन बाद उन्हें फोन करके पता कर लें आपका नाम विनर्स लिस्ट में ज्वाइन हो गया है, शामिल हो गया है या नहीं. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का. फन एशिया इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. और इसी के साथ, इस आखिरी गाने के साथ हम रैपअप कर रहे हैं इस 5 बजे के सेगमेंट का. क्योंकि मैं आपके साथ आज 6 या 6:30 बजे तक मौजूद हूं, इसीलिए ट्रैफिक, करेंसी, वेदर, गोल्ड प्राइस, ये तमाम अपडेट्स आपके लिए लेके आऊंगी 5 बजे से 6 बजे के दरमियान. सो लेट्स हेड ऑन टू अ शॉर्ट ब्यूटिफुल ब्रेक विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड देन वी विल कम बैक. लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज लाइंड अप फॉर यू. कहीं मत जाइए, मैं हूं किरण, आपके साथ मौजूद हूं आज पूरे 6:30 बजे तक.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with us this evening. Very warm and a happy evening to all of you. Main hu Kiran aapke saath. Sunte hain aap mujhe afternoon drive time with Sunehri Kiran mein 2:30 p.m. to 5 p.m. Aaj aapke saath 6:30 baje tak maujood hu. So, pehar ka aagaz aapke saath kiya tha aur sham ka aagaz bhi ab aapke saath hi kar rahi hu. Thank you so much once again for being an active and a lovely listener of Fun Asia Radio. Ab waqt aa chala hai aapko weather dene ka. Waise to main aapko 4:30 se 5 ke darmiyan weather deti hu, lekin chuki aaj aapke saath maujood hu 6:30 baje tak, so extend kar raha hai thoda sa time. Weather mein aaj hi Wednesday, May the 20th, 5:15 p.m. in the studio, and according to Weatherbug, city of Makini mein is waqt hai 79 degrees and it feels like 79 as well. Din raha partly sunny with highs around 80s, jabki sham rahegi mostly cloudy, a 50% chance of showers and thunderstorms after midnight. Lows jo hain wo 60s में जाने वाले हैं. ऑल इन ऑल इट इज अ ब्यूटीफुल डे. पोलन काउंट आज का 4 है, विच इज लो मीडियम, गुड न्यूज. ऑल्दो ग्रास एंड ओक इज व्हाट इज बॉदरिंग पीपल, जो 4 नंबर मिले हैं. यूवी इंडेक्स आज का 6, विच इज मीडियम हाई. और सनराइज आज का हुआ 6:23 एएम पे, जबकि आज का सनसेट होगा 6:22 PM. और इसी के साथ कल के बारे में भी आपको बताते चलूं जी. कल, विच इज थर्सडे मे 21st, शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स, हाईज इन द मिड 70s, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लाउडी, देन शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स लाइकली इन द इवनिंग, देन अ चांस ऑफ थंडरस्टॉर्म्स एंड शावर्स आफ्टर द मिडनाइट एज वेल. लोज जो हैं वो मिड 60s में रहने वाले हैं. सो अगले बहुत सारे दिन होने वाले हैं बहुत ही रेनी, बट जस्ट बी केयरफुल एंड बी हैप्पी.

0: Person. Principal Office, Dallas, Texas.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route. Rerouting.
1: Arre, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
1: Kyun?
2: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: Achha. तो सीधा वही ले चलो
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
4: रितेश कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा
5: अरे रिलैक्स सब तुम्हारा ही तो है
4: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा
5: वेट व्हाट
0: यस अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है
6: हाय दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग
0: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए कॉल 669-243-5799 दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन
7: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां
8: सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस मेंशन फनएजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस कॉल अमरीन एट 214-909-6601
9: और विजिट देयर इंस्टाग्राम अमरीन सैलून लोकेटेड एट एलन एंड फ्रिस्को
8: Green Salon. Style that moves with you.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
13: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
15: मुबारक ईद मुबारक
16: is hosting Grand Chandrad Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Events Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50-plus boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids' rides, henna artists, and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5259. Frisco Hall, located at 121 and Independence Parkway.
17: Don't touch that dial. Keep listening.

गुड़ किने खा लिया गुड़ वाली चाह किने पीती बुआ जी दा नाड़ा किने खिचया खिच के मारी किने सीटी।

0: All right, जी, before heading on to a short break, मैं आपको बताऊं, अगर आप होम ओनर हैं या बिजनेस ओनर हैं और आप जानते हैं कि स्टॉर्म सीजन सर पे खड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है. यू हैव टू ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स एट हेल टू नेल कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर प्रोफेशनल रूफ रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर्स. चाहे शिंगल्स हो या फिर TPO टू मेटल रूफिंग, वो हर तरह का प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल. और जो उनकी खास बात है वो है क्वालिटी एंड केयर. जो कुछ भी होगा वो टॉप क्वालिटी और टॉप केयर के साथ होगा. और यही नहीं, दे ऑल्सो ऑफर जनरल रीमॉडलिंग, पेंटिंग, रिपेयर्स एज वेल एज कॉन्क्रीट वर्क टू हेल्प योर प्रॉपर्टी लुक बेस्ट. तो आपने क्या करना है, निसार अहमद साहब को कॉल करना है फॉर द सर्विस, फॉर गेटिंग अ कोट. एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, 6825619795. ये है निसार अहमद साहब का नंबर ऑफ हेल टू नेल कॉन्ट्रैक्टिंग. वंस अगेन द नंबर इज 6825619795. जरूर कॉल कॉन्टैक्ट कीजिए फॉर डिपेंडेबल सर्विसेज. हेल to nail is the place to go for all your roof requirements.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Heere moti, main na chahun.
9: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho, ab shine double within budget. Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
10: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hain. Level 1, mixed veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, Masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
11: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
12: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
15: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
16: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
15: K2 ड्राइव मतलब?
16: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
15: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
16: 100%
17: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
18: चिकन बनाना, चिकन बनाना
19: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
20: दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट सैल्स नैशविल हॉट चिकन। दे डोंट जस्ट मेक इट, दे मेक इट अनफॉरगेटेबल। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, बोल्ड फ्लेवर्स, जंबो चिकन टेंडर्स, नैशविल सैंडविचेस दैट एक्चुअली हिट। लोकेटेड इन प्लेनो एंड रिचर्डसन, सैल्स नैशविल हॉट चिकन, वी फिक्स हैंग्री।
21: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
22: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
23: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
24: इतना सब और प्राइस?
23: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
25: मैं हीरो।
26: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
27: कितने आदमी थे?
28: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

All right, जी, आज है May 20th और May 20th को एक सुपरस्टार करते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट. लेट्स सेलिब्रेट हिम राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया विद योर ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और वो हैं जी एनटी रामाराव जूनियर. जी हाँ, 20th May 1983 इज हिज डेट ऑफ बर्थ. एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, टेलीविजन प्रेजेंटर हैं, जिन्होंने प्राइमरली तेलुगु सिनेमा में अपना नाम बनाया. ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा एंड हैज बीन फीचर्ड इन फोर्ब्स इंडिया Celebrity 100 list since 2012. Referred to in the media as the man of muscles, he has starred in over 30 films or several awards unhone jeete hain, including three South Filmfare Awards, jabke three Cinema Awards, SEMA Awards, IFA Award, and two Nandi Awards. This is N.T. Ramarao Jr. wishing him a very, very happy

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
4: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो।
8: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
2: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
13: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है।
12: रोज का सेम प्रॉब्लम।
14: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
15: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13। कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
16: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
17: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेंशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
18: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
19: Don't touch that dial. Keep listening.

ऑलराइट, दिस इज योर ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. बस कुछ मिनट मेरे और आपके और साथ हैं. जाने से पहले आपको एक मजे की बात बताने वाली हूँ, एंड दैट इज रिलेटेड टू मे द 20th. ऑन दिस डे इन 1873, लीवाई स्ट्रॉस और जेकब डेविस वर ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर ट्राउजर्स रीइन्फोर्स्ड विद रिवेट्स, जिसने यू नो वो कहते हैं ना बुनियाद डाली जीन्स की, जो आज टुडे एज वी नो जीन्स. स्ट्रॉस प्रोवाइडेड द मनी, जबकि डेविस अ टेलर हुज हार्ड वर्किंग क्लाइंट्स नीडेड ड्यूरेबल पैंट्स. तो देन दे केम अप विद डिजाइन जिसको ब्लू जीन्स कहा गया. आज तो ब्लू जीन्स जी स्टेपल हो गई है हर वार्डरोब की, बट दैट इज वेयर दे गॉट द पेटेंट 1873 ऑन मे द 20th. एक मजे की बात ये आपके लिए टुडे इन हिस्ट्री.

मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भूल के नहीं, आप लोग बिल्कुल भूल के हमारी गली नहीं आते, आप याद रख के हमारी गली आते हैं, यानी कि फनी शो की गली, विच इज 104.9 FM. यहाँ अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एकदम से आवाज कैसे बदल गई, किरण जी की इतनी प्यारी आवाज आप लोग तब से सुन रहे थे और ये अब किसकी आवाज, पारू की आवाज आ गई है. सो यस, वी आर चेंजिंग शिफ्ट काइंड ऑफ. मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई, 7 से 9 आप लोगों के साथ रहती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी आ गई, यानी कि अराउंड 6:30 वी स्विच्ड प्लेसेस. लेकिन वही फनीशिया है, वही 104.9 FM है, वही आपकी पसंद के गाने हैं और वही शाम है, वेंसडे इवनिंग. इट्स अ लिटिल हॉट विच इज गुड, थोड़ा चेंज हो गया वेदर, ज्यादा गर्म नहीं है लेकिन कल से थोड़ा सा बेटर है. आई थिंक ट्रैफिक भी थोड़ा बेटर होगा, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं आई एम श्योर दे मस्ट बी फीलिंग दैट. इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड, 9 बजे तक रहूंगी आप लोगों के साथ, यानी कि रिक्वेस्ट ले सकती हूँ जो आपको पसंद है. 972355555 Bottle in the house.

0: कुछ नहीं कर सकते अगर दिल चोरी हो गया तो. पर आज बताना चाहती हूँ आपको अबाउट कनेक्टिंग अमेरिका. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय कनेक्टिंग अमेरिका. विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रेटजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. एंड इट डजंट स्टॉप हियर, दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन 10 इयर्स और लेस. सो डोंट वेट, कॉल जेम्स टुडे एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com एंड स्टार्ट टर्निंग योर डेली एक्सपेंसेस इनटू इनकम. कनेक्टिंग अमेरिका.
1: मामू देखो क्या हो गया.
2: ओ क्या हो गया.
1: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है.
2: ओए जर्मन का कमाल है.
1: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
2: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
3: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
4: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
5: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
6: Main expert lifeline use karna chahunga.
5: Computer ji, SBA loan expert se connect kiya jaye.
7: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स

0: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
1: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
2: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
3: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
6: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
7: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
6: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
7: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
3: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
8: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad Panchtara is now open at a new location in Allen. Wahi swad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 PM to 9 PM, join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 PM. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana, supported by major Indian non-profit organization in DFW.
3: For booth and sponsorship contact admin@ambuj.us.

डिंग डोंग के साथ शुरू हो रहा है हमारा गिव अवे. यस, हियर इज योर चांस टू विन द कड़ाई पनीर और कड़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. प्लस व्हेन यू गो देयर, स्पेशली ड्यूरिंग लंच टाइम, आई वांट यू टू नो दैट यू कैन एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. यानी कि रोज आ सकते हैं, रोज नया खा सकते हैं. लोकेटेड ऑफ मैकडर्मिट ड्राइव इन एलन. And this is मैकडर्मिट ड्राइव है एलन में, वहां पर है चंडीगढ़ बाइट्स. यू कैन विजिट chandigarhbites.com, उनकी वेबसाइट फॉर डिटेल्स. अब मैं सवाल पूछती हूँ आपसे, कुछ इंटरेस्टिंग सा सवाल है एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस सॉन्ग जो अगला मैं गाना चला रही हूँ. उस फिल्म का नाम नहीं आपको बताना है, आपको मुझे उस फिल्म की ओरिजिनल गाना. सो ओके, ये जो गाना चलेगा ये एक रीमिक्स है, इसका जो ओरिजिनल गाना था. बहुत ही आसान सा फिल्म का सवाल है, बिकॉज दैट फिल्म वॉज वेरी वेरी पॉपुलर. कुछ मेरे ख्याल से अराउंड 3 decades हो गए होंगे इस फिल्म को आए हुए, 3 decades हो गए. इट वॉज अ ब्लॉक बस्टर, वेरी हिट. तो ये जैसे ही गाना चलेगा आप समझ जाएंगे कि ओरिजिनल गाना कौन सा है, और जैसे ही आप समझ जाएंगे कि ओरिजिनल गाना कौन सा है आप समझ जाएंगे कि उसका नाम क्या है. 9723555555, प्लीज कॉल फॉर द गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स.

0: थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का गाना था ये उस जमाने में. फनिशर रेडियो यू आर ऑन एयर. फनिशर रेडियो यू आर ऑन एयर. बड़े सारे कॉल्स आ रहे हैं. हाँ जी बोलिए. एब्सोल्युटली राइट मोरा. व्हाट्स योर नेम?
1: This is Mia.
0: Mia, thank you so much, Mia, for participating. I got the winner though, but thank you again. Fanisha Radio, you are on air.
2: Hey, hi. My name is Padma. I just wanted to answer the question.
0: Sure, go ahead.
2: Is it movie Mohara, Akshay Kumar and Raveena Tandon?
0: Absolutely right. Nasruddin Shah as well. And Sunil Shetty. Yes, thank you so much for this. I got the winner though, but thank you again.
2: Okay.
0: बहुत सारे कॉल्स आए हैं एंड आई मस्ट से दिस आई थिंक कोई और है हमारे साथ जुड़े हुए. फनिशर रेडियो नहीं शायद हो गया है वो डिसकनेक्ट. सो यस आई प्रोबेबली गॉट आई डोंट नो अभी तो मेरे पास नंबर ही नहीं है शायद 10-15-20. आई वाज कॉन्स्टेंटली टेकिंग द कॉल्स. अगर किसी का कॉल मिस हो गया आई अपोलोजाइज क्योंकि बहुत सारे आए हैं. मोरा 1994 की अ वेरी बिग ब्लॉकबस्टर डायरेक्टेड रिटन को रिटन यू कैन से एडिटेड डायरेक्टेड बाय रवि राजीव राय एंड दिस सॉन्ग एट दैट टाइम क्रिएटेड अ सेंसेशन क्योंकि थोड़ा सा अपने जमाने से आगे था लिरिक्स और इस तरह के तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल उस जमाने में लगा था. उसके बाद तो खैर लोगों को आदत हो गई एंड सो मेनी डिफरेंट सॉन्ग्स have come but it was such a catchy song and the dance and everything that it became an instant hit. Aur jo hit hota hai wo to chalta hai. Badnaam bhi ho to kya hai, naam to hai, itna naam hai ki iske remixes bhi aate hain aur wo bhi bahut zyada chalte hain. Lekin shayad film kitni bhi aur uski remix ban jaye lekin jo Mohra original hai usko beat kar pana mushkil hai. Chaliye ek gana aur sunte hain aur uske baad milungi aapse us par yani ki ek chote se break ke baad. Paru rahegi aap logo ke sath 9 बजे तक.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डायलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
3: कभी-कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर।